0: हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताए एवं काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियाँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हमारे विचार और हमारे कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम नकारात्मक और बुरी सोच के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो हमें दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर यदि हम शुद्ध और सकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं और काम करते हैं तो हमें खुशियाँ और सफलता का अनुभव होता है। हमारे विचारों की शुद्धता हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं।
1: सुप्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण FM 103.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं और इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी प्यारे श्रोताओं का मैं आपका रेडियो दोस्त कारगरुबा आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सन 2026 के जून महीने के आज 7 तारीख है और दिन है रविवार। आज के हमारे पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर अत तथा तकनीकी अभियंता विमल चंद्र शर्मा। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हमारे पहले प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा को।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर प्रसारित होगा गालो श्रोताओं का समाचार।

6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। 7:10 पर प्रसारित होगा आपातकालीन श्रोताओं का समाचार। 7:15 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। 7:35 पर आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

0: 10:10 पर आप सुनेंगे आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। 11:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तो प्यारे श्रोताओं, ये था आज के हमारे पहले प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपका अपना आरजे कारगर और लेकर आया हूं प्रेम शांति और विश्वास से भरा भक्ति गीत कार्यक्रम। श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम, क्षमा और करुणा का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि अगर दिल में सच्चा विश्वास हो तो जीवन के हर अंधेरे में भी आशा की रोशनी मिल सकती है। उनका संदेश हमें याद दिलाता है, दूसरों से प्रेम करो, एक दूसरे की सहायता करो और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। आज के इस पावन कार्यक्रम में हम सुनने जा रहे हैं क्रिश्चियन भक्ति गीत हाबुंग जोशुआ और साथियों के आवाजों में। ये भक्ति गीत मन को शांति देंगे, दिल को सुकून देंगे और आत्मा को प्रभु यीशु के प्रेम से भर देंगे। तो आइए दिल को प्रार्थना और विश्वास से जोड़िए और शुरुआत करते हैं आज का भक्ति गीत कार्यक्रम।

श्रोताओ आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम भक्ति गीत। आज के भक्ति गीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं क्रिश्चियन भक्ति गीत। श्रोताओ प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा अगर हम एक दूसरे से सच्चे मन से प्रेम करें तो वही ईश्वर की सबसे सच्ची आराधना है। यीशु मसीह ने हमें करुणा और क्षमा का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि अगर कोई गलती करे तो उसे क्षमा करना भी उतना ही जरूरी है जितना स्वयं सही राह पर चलना।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज के भक्ति गीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार।
1: से आकाशवाणी ईटानगर तनगदम रोगाम जाबा हिलपोल ग अलो खन्नान अरसोग नुनुक तलिरु नाम गालो मेंकिन अंग मेंजिदो मेंकेन मेंजिना सि कोई जिरदो मरो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बु पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ईएसई लोक मेंबर गदम दुबम दुला कबागो बादु मिसितो कबासोगो इंडिया सोक इकोनॉमिक योब्रु बोलो अल्ब कैया बुरु केंदोदु ओक तलकु पो सोक नरु इकोनॉमिक अबा अची योंब अलिया दे दोना दे ओकलगाम जब दुमतु ओक नी तनी रगो दुग अल्ब रकें कुनम लगाब बिजनेस अबाम योब तकते आया बुरु केन दोना दे ओकलगाम चिन जब दुमतु ओक वेस्ट एशिया लोक अकेन अकेन कंट्री ग रिन्यू रिचो रुमिन सिनम सिगम चिन योम बुरु केन दो कुना दे अमला कबासो दिंची जाब जब दुमका मरो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रजिस्टर डगलो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर लोक काउंटीज ऑफ इकोनॉमिक रेट 7.7% गोब कैयाब पानम सिग कब कब काउंटी लोक इज इकोनॉमिक ग्रोथ अब माप दौला चिन मुग काउंटीज ऑफ संब पानम सिग माजिब मर्ज सिनाम गोब रिका अमला मेंदुला ब आलन अनि तोल चिन संब दादा पाले इंदोब रिर अमला मेंतु ओके संबरगनम सिगचिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लीडरशिप न्यूरगोला न्यूनी अन्य बुका नगन अबाम चतुर्मेन तोला नगन अबा अबालोक रिगनम लगाब संब पादुना के अमला मेंकिंतो अरुणाचल प्रदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर केती परनायक असम राइफल डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लक्राने सोकपोल गे इनेन लोपिनान अलोलो सिलोंग लो कारिक तारिक सिदूल इंटरनेशनल बॉर्डर लगाब जब्दु मिसितो सोगो इंडो म्यांमार बॉर्डर लोक असम राइफल गदिक अलरूब अगर गर्बामला रिनाम सिगम कादुला बु बॉर्डर लो पीस रमापला अगरम गर्दव रिलाजुका अमला मेंदुला बॉर्डर मोको सिगम ने चतोर मेंतोर नमम चिन अचिब रिब लजुका अगुम लोक अतमान नील सोदो नगन अकम चतोर मेंतोरम दिंचिब रिब लजुका अमला मेंदुला बु बॉर्डर नचि लोक दोलु दोलिक न गद सिगम चिन काउताबा एम ओक चतोर मेंतोरम अचिरुब रिलाजुका अमला सोगो मेंतो चीफ मिनिस्टर नरवी पेमा कांदू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर छोना मेन ओक कई कई ने लीडर गद मरोग गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल चिंपू लोक अरुणाचल प्रदेश बीजेपी गदक एक फेर मा के नाम अमला सिगम से वो ललिक दगलो बुल्ला चिन रलिक तो लोदुम सगो बीजेपी वर्कर स्टूडेंट टीचर वॉलंटियर ओके लोकल नी गद रलिक दूला दिन चिजाब नसी नम एम ललिक ला ओके असुमान्य नम दिरिक दरक दोब रिनाम अबा लोदुम का मरोग लोदुम सगो चीफ मिनिस्टर बु मेनला इजिग मुनुक नसिनम ललिक नम सिगे लुनिन नियतम नतला को गोयक आगदम दोन्युम जिला दोर दोन्युम एम पागला ओक सोक दोरम पागला अल रूब रिग तरकुनाक एमला मेंदुला संब सिलोग मुनुक अगर गर नम सिगचिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग न्यूरुगोला न्यूनि लीडरशिप रिदक सोक बुक अलालन बदालोक अगर गर कलोक सकन अबाम चिन रिपादुनाक एमला मेंतो अरुणाचल प्रदेश सोक डिपार्टमेंट

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, सुबह की ताजी हवा, उगता हुआ सूरज और नई ऊर्जा के साथ आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो सुबह सवेरे। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और अगले कुछ पलों में हम साथ मिलकर करेंगे एक हेल्दी और पॉजिटिव शुरुआत अपने दिन की। दोस्तों, आज की तेज भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो जिंदगी का मजा अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम में हम रोज लेकर आते हैं योग के आसान आसन जो शरीर को और मन को संतुलित रखें, सिंपल एक्सरसाइजेस जो आपको बनाए फिट और एक्टिव, और कुछ जरूरी हेल्थ टिप्स जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी को बनाए और बेहतर। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए अपने शरीर

तो चलिए सबसे पहले कार्यक्रम में रुक करते हैं योग सेगमेंट की ओर। सुबह सवेरे के आज के योग सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या की, अपच यानी इनडाइजेशन की। गलत खान पान, देर से खाना, ज्यादा तला भुना भोजन और तनाव की वजह से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे गैस, पेट फूलना, बारीपन और अपच जैसी दिक्कतें होने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नियमित योग और प्राणायाम से पाचन तंत्र मजबूत बनता है और अपच की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कुछ आसान और प्रभावी योगासन। सबसे पहला है वज्रासन। इसे करने के लिए घुटनों को मोड़कर एरियो पर बैठ जाएं, हाथों को घुटनों पर रखें और रीढ़ सीधी रखें। 5 से 10 मिनट तक इसी मुद्रा में बैठें। इससे आपके पाचन तंत्र को मजबूत मिलता है और गैस और अपच में राहत देता है। और ये एक मात्र योग है जो खाने के बाद भी किया जा सकता है। अगला योगासन है पवन मुक्तासन। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाए, घुटनों को मोड़कर छाती से लगाए, हाथों से पकड़कर 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करें। इसे करने से आपके पेट की गैस निकलने में मदद मिलती है और पेट दर्द और अपच में राहत मिलती है। अगला है भुजंगासन। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को कंधों के पास रखें, धीरे धीरे छाती को ऊपर उठाएं, 10 से 15 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। इसके फायदे हैं, पाचन अंगों को सक्रिय करता है, कब्ज और अपच में सुधार होता है।

अगला है अर्ध मत्स्यांध्र आसन। इसे करने के लिए जमीन पर बैठकर एक पैर को मोड़े, शरीर को धीरे धीरे विपरीत दिशा में मोड़े, 15 से 20 सेकंड तक रुके। इसके कुछ फायदे हैं, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। अगला और अंतिम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे कैसे करें? आराम से बैठ जाएं, एक नाक से सांस लें और दूसरे से छोड़ें, और इसे विपरीत दिशा में दोहराएं। 5 से 10 मिनट तक अभ्यास करें। इसे करने से तनाव कम होता है और पाचन क्रिया को संतुलित करता है। दोस्तों, कुछ जरूरी सलाह, योग हमेशा खाली पेट करें सिवाय वज्रासन के। तला भुना और ज्यादा मसालेदार भोजन कम करें, समय पर भोजन करें और खूब पानी पिए। याद रखिए दोस्तों, अच्छा पाचन ही अच्छी सेहत की बुनियाद है। अगर पेट स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी ऊर्जा से भरा रहेगा। फिर मिलेंगे सुबह सवेरे के अगले योग सेगमेंट में। तब तक स्वस्थ रहिए, एक्टिव रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। सुनते हैं लक्ष्य मूवी का ये टाइटल ट्रैक, जिसे गाया है शंकर महादेवन ने। संगीतकार हैं शंकर एहसान लोए।

दोस्तों आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुबह सवेरे। दोस्तों आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हेल्थ सेगमेंट की ओर। दोस्तों आज हम हेल्थ सेगमेंट में बात करेंगे शरीर के सबसे अनमोल अंगों में से एक यानी आंखों के बारे में। आजकल मोबाइल, लैपटॉप और टीवी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों को थकान, जलन, सूखापन और सिर दर्द जैसी समस्या होने लगी है। इसलिए आंखों की सही देखभाल करना बेहद जरूरी हो गया है। तो आंखों की देखभाल क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है साफ और स्पष्ट दृष्टि के लिए। आंखें हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका देती है। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे दृष्टि कमजोर हो सकती है। डिजिटल आई स्ट्रेन से बचाव। मोबाइल और कंप्यूटर के ज्यादा उपयोग से डिजिटल आई स्ट्रेन हो सकता है, जिससे आंखों में दर्द, धुंधलापन और पानी आना जैसे समस्याएं हो सकती हैं। आंखों की बीमारियों से बचाव। आंखों की सही देखभाल से कई समस्याओं से बचा जा सकता है, जैसे कंजंक्टिवाइटिस, ड्राई आईज और आंखों की एलर्जी। अगला है सिर दर्द और थकान से राहत। कई बार लगातार स्क्रीन देखने से सिर दर्द और मानसिक थकान भी होने लगती है। सही आई केयर से ये समस्या कम हो सकती है। दोस्तों आंखों की देखभाल के लिए कुछ आसान सा टिप्स हैं। 20-20-20 नियम अपनाएं। हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखें। पर्याप्त नींद लें। रोज कम से कम 7-8 घंटे की नींद आंखों को आराम देती है। आंखों को बार बार धोएं। साफ पानी से दिन में 2-3 बार आंखों को धोना फायदेमंद होता है। पौष्टिक आहार लें। डाइट में शामिल करें गाजर, पालक, बादाम, आंवला। ये आंखों की रोशनी के लिए अच्छी मानी जाती है। धूप में सनग्लास पहने। तेज धूप और धूल से आंखों को बचाने के लिए सनग्लास जरूर पहने। आंखों की एक्सरसाइज करें। रोज कुछ मिनट फार्मिंग, ब्लिंकिंग और आई रोल एक्सरसाइज करें। याद रखिए दोस्तों आंखें हमारे जीवन की रोशनी है। अगर हम रोज थोड़ा सा समय इनकी देखभाल में लगाए तो हमारी दृष्टि लंबे समय तक स्वस्थ रह सकती है। इसी के साथ खत्म होता है आज का हेल्थ सेगमेंट। फिर मिलेंगे एक नई हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी आंखों का खास ख्याल रखिए। दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आइए दोस्तों कार्यक्रम के अंत में एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं, सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म किसना से।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

आकाशवाणी नानगर के अनुनय एफएम 101.1 MHz पर चाह होती है दिल से दिल की बात। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट। दोस्तों, हर सुबह अपने साथ लेकर आती है नई उम्मीदें, नए अवसर और नई जानकारियां, और हम यहां हैं आपको दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों और अपडेट से रूबरू कराने के लिए। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया और राजधानी ईटानगर से प्रकाशित लोकल न्यूज के जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं आज के राष्ट्रीय ताजा खबरें। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.7% रही। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है, जबकि जनवरी मार्च तिमाही में वृद्धि दर 7.8% रही। विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू मांग और निवेश में वृद्धि इसकी प्रमुख वजह रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक विकास रणनीति पर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के साथ बैठक की। बैठक में आर्थिक विकास, निवेश बढ़ाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। रुपए को स्थिर करने के लिए सरकार और आरबीआई सक्रिय। हाल के वैश्विक तनाव और तेल कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच सरकार तथा आरबीआई रुपए को मजबूत बनाए रखने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। विदेश निवेश आकर्षित करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। भारत वेनेजुएला ऊर्जा सहयोग पर चर्चा। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगज की भारत यात्रा के दौरान ऊर्जा, तेल और व्यापारिक सहयोग पर महत्वपूर्ण वार्ताएं हुई। दोनों देशों ने ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने की इच्छा जताई है। विश्व पर्यावरण दिवस के बाद पर्यावरण संरक्षण पर जोर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देशभर में पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण और हरित विकास से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाएं जन जागरूकता अभियान चला रही है। मानसून की प्रगति पर नजर। देश के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियां तेज हुई हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी तट और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। अमेरिका ईरान तनाव फिर बढ़ा। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ड्रोन गतिविधियों और समुद्री सुरक्षा चिंताओं के बाद ईरानी सैन्य ठिकानों से जुड़े कुछ रडार स्थलों पर कार्रवाई की है। इसके बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। मध्य पूर्व संकट से वैश्विक तेल बाजार चिंतित। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर दिखाई दे रहा है। ऊर्जा सुरक्षा और तेल आपूर्ति को लेकर कई देशों ने चिंता व्यक्त की है। यूक्रेन मुद्दे पर यूरोपीय नेताओं की अहम बैठक। इमैनुअल मैक्रोन, कियर स्टर्मर और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन संकट और यूरोपीय सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। पेरू में राष्ट्रपति चुनाव का दूसरा चरण। आज पेरू में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। इस चुनाव को पूरे लैटिन अमेरिका में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। बिम्स्टेक सहयोग पर नेपाल की अपील। नेपाल ने बिम्स्टेक देशों से जलवायु परिवर्तन, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर सहयोग बढ़ाने की अपील की है। यह पहल दक्षिण एशिया और भारत की कारी क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज मनाया जा रहा है। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2026 मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। डब्ल्यूएचओ ने सुरक्षित खाद्य व्यवस्था को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। तो दोस्तों, ये था आज का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताजा खबरें। चलिए रुक करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित अरुणाचल टाइम्स अखबार के मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। पैसेंजर ट्रेन माउस डाउन कार टू डेड। शुक्रवार दोपहर डेकापाम इलाके में हुए एक दुखद हादसे में तलम रेलवे स्टेशन के पास रेल क्रॉसिंग पर मुरकोंगसेला जा रही एक पैसेंजर ट्रेन ने मारुति कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार दो लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार
लेदा मुरकोंगसेलेक पैसेंजर ट्रेन ने रेल क्रॉसिंग पर कार को तब टक्कर मारी जब वह धीरे धीरे रेल लाइन पार कर रही थी। कमिटी डिमांड्स यूनिफॉर्म अप्रोच टुवर्ड्स ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ऑल अरुणाचल प्रदेश मस्जिद वेलफेयर कमेटी ने शनिवार को मांग की कि ईटानगर कैपिटल रीजन जिला प्रशासन बिना सही मंजूरी के चल रहे सीमा सभी धार्मिक संस्थानों के प्रति एक जैसा रवैया अपनाएं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। साथ ही कमेटी ने अधिकारियों द्वारा हाल ही में सील की गई मस्जिदों को तुरंत खोलने की भी मांग की। इंडिया चाइना शेयर टू मिलेनिया ऑफ लेगेसी ऑफ लर्निंग एंड डायलॉग इंडियन एनवॉय। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरायस्वामी ने कहा कि 2000 से ज्यादा सालों से भाषाओं को एक दूसरे से सीखना और विचारों को आदान प्रदान दोनों देशों के रिश्तों की एक अहम विशेषता रही। दोराई स्वामी, जिन्होंने पिछले महीने चीन में भारत के राजदूत का पद संभाला था, ने बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी का दौरा किया। वहां उन्होंने शुक्रवार को एक लेक्चर दिया और छात्रों तथा फैकल्टी सदस्यों से बातचीत की। कंप्लेन लॉन्च ओवर ऑर्गेनाइजिंग जनजाति सांस्कृतिक समागम। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तार जूनी ने ईटानगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने नई दिल्ली में हाल ही में हुए जनजाति सांस्कृतिक समागम से जुड़े कुछ आयोजकों और टीम लीडरों के व्यवहार के जांच की मांग की है। ईटानगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को दी गई अपनी शिकायत में जोनी, जो नॉर्थ ईस्ट यूथ कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उसने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में दिए गए भाषण, नारे और सार्वजनिक संदेशों ने एक कास्ट धर्म को निशाना बनाया, जिससे अरुणाचल प्रदेश के मासूम आदिवासी समुदायों के बीच सामाजिक अशांति, धार्मिक द्विखरण और बंटवारा पैदा हो सकता है। कांग्रेस अर्जेस गवर्नमेंट टू रिजॉल्व दायट सैलरी डिले इश्यू। कांग्रेस की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने शनिवार को राज्य सरकार से एससीईआरटी और डाइट के टीचर, एजुकेटर्स और कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि सैलरी मिलने में लगातार हो रही देरी की वजह से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की कगार पर पहुंच गए हैं। सीएम अर्जेस पीपल टू मेक ट्री प्लांटेशन।

लाइफ लॉन्ग मिशन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शनिवार को राज्य के लोगों से अपील की कि वे पेड़ लगाने के काम को सिर्फ साल में एक बार की रस्म न मानकर इसे जीवन भर का मिशन बनाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि टिकाऊ भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण और विकास का साथ साथ चलना जरूरी है। फासिंग डाउन ट्रेडिशन टू यंगर जनरेशन। पारंपरिक मकोटा नृत्य नाटक सदियों पुरानी पवित्र रीति रिवाजों और परंपराओं में गहराई से रचा बसा है। यह परंपराएं प्रकृति, आध्यात्मिकता और मानवता को आपस में जोड़ती है और ये ऐसे मूल्य है जिन पर आधुनिकरण का कोई असर नहीं है। बोमदिला में शहरी विकास एजेंसी विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और पश्चिम कामेंग जिले के खूबसूरत गांव शेरगांव के रहने वाले दोरजी खांडू टुंगोन अपने पूर्वजों की इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। येलो पॉपबॉल मशरूम रिकॉर्डेड इन लोंगडिंग। लोंगडिंग कृषि विज्ञान केंद्र केवीके की एक टीम ने 4 जून को जेदुआ गांव के दौरे के दौरान एक पीले पॉपबॉल मशरूम को देखा। इसकी खास पीली गोल फ्रूटिंग बॉडी और पॉपबॉल जैसी बनावट के आधार पर केवीके के प्लांट पैथोलॉजी एक्सपर्ट डॉ दीप नारायण मिश्रा ने इस नमूने की पहचान शुरुआती तौर पर बोविस्ता कोलोराटा के रूप में की। तो दोस्तों, ये था आज के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और लोकल न्यूज। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट में। दोस्तों, आइए कार्यक्रम में एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। सुनते हैं फिजा फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत। आवाज दी है अलका याग्निक, उदित नारायण और प्रशांत ने।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में एक और खूबसूरत गीत, आवाज दी है सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

दोस्तों इसी गीत के साथ ही आज का मॉर्निंग इंटरटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अगला प्रस्तुति है तागिन श्रोताओं का समाचार, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार, और आगे के कार्यक्रमों को आप हमारे मीडियम वेब चैनल में सुन सकते हैं। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सदाबहार के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Dil se dil tak बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
4: गीत संगीत,
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात,
4: बस आपके नाम।
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कारगर और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा संगीत कार्यक्रम सदाबहार। दोस्तों, दिन की भागदौड़ के बीच कुछ पल सुकून के, कुछ पल मधुर संगीत के और कुछ पल अपने शहर की ताज़ा जानकारी के लिए हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको देंगे ईटानगर के मौसम का ताजा हाल। आज आसमान का मिजाज कैसा है, धूप कितनी खिली रहेगी, बादल क्या संकेत दे रहे हैं और बारिश की कोई संभावना है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी हम पहुंचाएंगे आप तक। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है और आज भी मौसम में नमी और बादलों का असर बना रहने की संभावना है। सुबह का हाल, आज सुबह मौसम काफी सुहावना और नम बना हुआ है। आसमान में बादलों की अच्छी मौजूदगी रहेगी। तापमान लगभग 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दोपहर का मौसम, दोपहर तक तापमान बढ़कर करीब 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि तेज और लगातार धूप की संभावना कम है, बादलों और धूप की लुका छुपी बनी रह सकती है। बारिश की संभावना, आज दिन भर मौसम थोड़ा अस्थिर रह सकता है। दोपहर या शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ इलाकों में गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती है। शाम होते होते मौसम काफी प्लीजेंट महसूस होगा। बारिश होने की स्थिति में तापमान गिरकर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। हल्की ठंडी हवाएं चल सकती हैं। रात में आसमान अधिकतर बादलों से घिरा रह सकता है। हालांकि बूंदाबांदी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। तो आज ईटानगर में मौसम का मिजाज रहेगा बादलों की अच्छी मौजूदगी, बीच बीच में बारिश की संभावना और गर्मी से राहत देने वाला सुहावना वातावरण। अगर आप बाहर निकल रहे हो तो छाता साथ रखना और अच्छा विचार होगा, क्योंकि मौसम कभी भी करवट ले सकता है। और अब इसी प्यारे मौसम के साथ बढ़ते हैं एक मधुर सदाबहार गीत की ओर, सिर्फ अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं सदाबहार, जहां हर गीत दिल की गहराइयों को छू जाता है और हर धुन अपने साथ लेकर आती है प्यार और यादों की खुशबू। और अब बारी है एक ऐसी मधुर गीत की जो पहली मोहब्बत की मासूमियत और दिल की धड़कनों को बड़ी खूबसूरती से बयां करता है। कहते हैं जब किसी से नजरें मिलती हैं तो दिल की दुनिया ही बदल जाती है, हर ख्वाब रंगीन लगने लगता है और हर पल में एक नया एहसास बस जाता है। इन्हीं कोमल भावनाओं के सुरों में पिरोया गया है फिल्म द फर्स्ट लव लेटर के इस प्यारे नगमे में जब से मिले नैना, जिसे अपने मधुर और जादुई आवाज से सजाया है स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सदाबहार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

0: एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
5: Collaborate closely to maintain security.
6: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
5: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
3: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
7: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
8: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीना।
3: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
9: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और टाइग्रिस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
3: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
10: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
3: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
11: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
3: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
12: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने

नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका अपना आरजे कारगर। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट, जहां हम जानेंगे कि आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी उपयोगी जानकारियां, और साथ ही सुकून भरे मधुर गीत जो आपके मन को शांति और ताजगी से भर देंगे। तो आइए देखते हैं 7 जून को इतिहास के पन्नों में क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटी थी। आइए भारत की नजर से एक नजर देखते हैं। 7 जून 1893, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के फिटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद ट्रेन से उधार दिया गया था। यह घटना गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी और आगे चलकर सत्याग्रह तथा अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा बनी। वर्ष 1981, भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान रवाना। 7 जून 1981 को भारत के पहले अंटार्कटिका अभियान की तैयारियों को औपचारिक गति मिली। इस अभियान ने भारत को ध्रुवीय अनुसंधान के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई, भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उपलब्धियां। 7 जून के दिन विभिन्न वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास से जुड़ी अनेक गतिविधियों दर्ज हुई, जिन्होंने भारत की वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े आयोजन 7 जून को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई राष्ट्रीय नेताओं द्वारा सभाएं और जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिन्होंने देशभक्ति की भावना को मजबूत किया। आइए एक नजर विश्व इतिहास में देखते हैं 7 जून में घटित प्रमुख घटनाओं पर एक नजर। वर्ष 1494, टॉर्डेसिलेस की संधि। 7 जून 1494 को ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलेस पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के माध्यम से स्पेन और पुर्तगाल ने नई खोजी गई भूमि के बंटवारे का समझौता किया। वर्ष 1654, फ्रांस के राजा लुई 14वीं का राज्याभिषेक। लुईस 14 का राज्याभिषेक 7 जून 1654 को हुआ था। वे यूरोप के सबसे प्रभावशाली शासकों में गिने जाते हैं। 1929, वेटिकन सिटी बना स्वतंत्र राष्ट्र। 7 जून 1929 को वेटिकन सिटी से जुड़े प्रशासनिक प्रावधान लागू हुए, जिससे वेटिकन की स्वतंत्रता स्थिति को मजबूती मिली। वर्ष 1942, मिडवे का युद्ध समाप्त। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रसिद्ध बैटल ऑफ मिडवे 7 जून 1942 को समाप्त हुआ। यह युद्ध प्रशांत महासागर में मित्र राष्ट्रों की महत्वपूर्ण जीत मानी जाती है और इसे द्वितीय विश्व युद्ध का निर्णायक मोड़ भी कहा जाता है। वर्ष 1955, रंगीन टेलीविजन प्रसारण का विकास। 7 जून 1955 को संचार और प्रसारण तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई, जिसने आगे चलकर आधुनिक टेलीविजन उद्योग को नई दिशा दी। तो दोस्तों, 7 जून का दिन साहस, संघर्ष, विज्ञान खोज और विश्व इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। एक ओर गांधी जी के जीवन की वो घटना जिसने दुनिया को सत्याग्रह का मार्ग दिखाया, तो दूसरी ओर विश्व इतिहास की ऐसी घटनाएं जिन्होंने देश और समाज को ही दिशा बदल दी। इतिहास हमें सिखाता है कि कभी कभी एक

छोटी सी घटना भी भविष्य का बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम में ये बेहद खूबसूरत गीत उदित नारायण की आवाज में।

दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। तो दोस्तों आप बात करते हैं आज यानी 7 जून को कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। ये दिन स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और जागरूकता से जुड़ा हुआ है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। हर साल 7 जून को पूरी दुनिया में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई थी और इसका आयोजन मुख्य रूप से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है, इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के महत्व के बारे में जागरूक करना है। खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है? यदि भोजन सुरक्षित ना हो तो इससे गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग, टाइफॉइड, हैजा, डायरिया, अन्य संक्रमणजित रोग। विश्व स्तर पर हर वर्ष लाखों लोग दूषित भोजन के कारण बीमार पड़ते हैं। इस साल यानी 2026 की थीम है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। हर साल एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा श्रृंखला खेत से लेकर थाली तक को सुरक्षित बनाना है। इस दिन विभिन्न देशों में सेमिनार, जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हम खाद्य सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? भोजन बनाने से पहले हाथ धोएं, ताजा और स्वच्छ खाद्य पदार्थों का उपयोग करें, भोजन को सही तापमान पर सुरक्षित रखें, पीने के लिए स्वच्छ पानी का प्रयोग करें, फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाएं। भारत जैसे विशाल देश में खाद्य सुरक्षा का महत्व और भी अधिक है। स्वच्छ भोजन न केवल स्वास्थ्य की रक्षा करता है बल्कि देश की उत्पादकता और आर्थिक विकास को भी योगदान देता है। तो दोस्तों 7 जून हमें यह संदेश देता है कि अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ अच्छे भोजन से नहीं बल्कि सुरक्षित भोजन से भी जुड़ा है। याद रखिये, स्वस्थ भोजन, सुरक्षित भोजन, यही है बेहतर जीवन का आधार। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब इसी खूबसूरत संदेश के साथ बढ़ते हैं एक और मधुर गीत की ओर। सुनते रहिए हेलो ईटानगर।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। भारत एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ न्यू चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन से आगे खेलेगी। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 और ऋषभ पंत 8 शतक बनाकर क्रीज पर हैं। साई सुदर्शन ने 81 रन का योगदान दिया। अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम सरफी ने 2 और जियाउर रहमान ने 1 विकेट लिया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला फ्लेवियो कोबोली से होगा। रूस की मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल में एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालिंस्का को सीधे सेट में 6-3, 6-2 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप, मनोरंजन की रंगीन दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, सितारों की चमचमाती दुनिया की हर हलचल और फिल्मों के ताजा अपडेट्स के साथ। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। दोस्तों, अगर आपको बॉलीवुड की चटपटी खबरें सुनना पसंद है, अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानना अच्छा लगता है, नई फिल्मों के रिव्यू सुनने को शौक है और OTT की दुनिया में क्या ट्रेंड कर रहा है इसकी जानकारी रखना चाहते हैं, तो आने वाले कुछ मिनट आपके लिए होने वाले हैं बेहद खास, क्योंकि आज के इस फिल्मी सफर में हम बात करने जाएंगे बॉलीवुड की ताजा और ट्रेंडिंग खबरों की, सितारों के दिलचस्प गॉसिप और चर्चाओं की। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आज के ताजातरीन बॉलीवुड अपडेट्स पर एक नजर। AR रहमान का अटारी बॉर्डर पर मेगा कंसर्ट, आज की सबसे अनोखी और चर्चित गंभीर खबर यह है कि संगीत जगत से आए हैं संगीतकार AR रहमान आज जय हो एट्रिब्यूट टू द ब्रेव हार्ट्स नामक विशेष कंसर्ट में भारत पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पर प्रस्तुति दे रहे हैं। ये कार्यक्रम BSF जवानों के सम्मान में आयोजित किया गया है। इसी दौरान उनकी आगामी फिल्म मैं वापस आऊंगा की थीम भी मौजूद रहेगी। आवारापन 2 को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ा। इमरान हाशमी की बहुप्रतीक्षित फिल्म आवारा फन 2 की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म अब 14 अगस्त 2024 को रिलीज होगी। सोशल मीडिया पर फिल्म के गाने और इमरान हाशमी के पुराने रोमांटिक दौर को लेकर जबरदस्त नॉस्टैल्जिया देखने को मिल रहा है। लगता है 2000s का रोमांस फिर से बड़े पर्दे पर वापसी करने वाला है। वरुण धवन की नई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की। वरुण धवन की नई फिल्म है जवानी तो इश्क होना है ने रिलीज के पहले दिन अच्छा प्रदर्शन किया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने लगभग 11 करोड़ की ओपनिंग दर्ज की और इस सप्ताह की नई रिलीज फिल्मों में बढ़त बनाई है। फरहान अख्तर और डॉन ट्री विवाद अभी भी चर्चा में। बॉलीवुड में इस समय सबसे चर्चित इंडस्ट्री इनसाइडर खबरों में से एक है डॉन ट्री को लेकर चल रहा विवाद। रिपोर्ट्स के अनुसार फरहान अख्तर और रणवीर सिंह से जुड़ा मामला अब इंडस्ट्री संगठनों तक पहुंच चुका है। फिल्म के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या डॉन ट्री अपने तय रूप में बनेगी या कहानी में नया ट्विस्ट आएगा, इस सवाल का जवाब हर बॉलीवुड फैन जानना चाहता है। दोस्तों, हम लौटेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद और भी ताजातरीन अपडेट्स के साथ। बने रहिए फिल्मी गपशप में।

और इसीलिए दोस्तों मैंने फैसला किया कि फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूंगा।

प्रस्तुत इस वक्त आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। दीपिका रणवीर फिर बने एंटरटेनमेंट हेडलाइंस। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक बार फिर मीडिया पर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनकी फिल्मों, ब्रांड्स और सार्वजनिक उपस्थितियों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। एंटरटेनमेंट जगत में ये जोड़ी आज भी सबसे प्रभावशाली स्टार कपल्स में गिनी जा रही है। कुछ सितारे खबरों में नहीं होते बल्कि खुद खबर बन जाते हैं और दीपिका रणबीर उन्हीं में से एक हैं। आमिर खान के प्रोडक्शन की नई फिल्म का नाम चर्चा में। फिल्म लाहौर 1947 को लेकर एक दिलचस्प अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के नाम और प्रस्तुति को लेकर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं और अब इसे जुड़ी नई जानकारी सामने आ रही है कि फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। इतिहास, भावनाएं और बड़े सितारे, ये फिल्म रिलीज से पहले ही चर्चा का केंद्र बनी हुई है। दोस्ताना तू को लगा एक और झटका। बॉलीवुड की लंबे समय से अटकी हुई फिल्म दोस्ताना तू एक बार फिर सुर्खियों में है। खबरों के मुताबिक फिल्म के निर्देशक अद्वैत चंदन ने कथित तौर पर प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। इंडस्ट्री में अब चर्चा है कि फिल्म की दिशा और भविष्य को लेकर निर्माता नई रणनीति बना सकते हैं। लव एंड वॉर के गाने को लेकर जबरदस्त चर्चा। बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक लव एंड वॉर को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। फिल्म से जुड़ी कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने हाल ही में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पर फिल्माए गए एक कास्ट गाने को मैजिकल बताया। इसके बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। दोस्तों, हम लौटेंगे और भी ताजातरीन अपडेट्स के साथ। बने रहिए फिल्मी गपशप में।

दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। तापसी पन्नू का बॉलीवुड एजेंट पर बयान वायरल। तापसी पन्नू का एक बयान आज खूब चर्चा में है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियों के लिए उम्र को लेकर अलग नजरिया अपनाया जाता है, जबकि पुरुष सितारों के लिए ऐसा नहीं होता। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना हुआ है। इम्तियाज अली के बयान ने चोरी नई बहस। निर्देशक इम्तियाज अली का हालिया बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टार किड्स को भी काफी स्क्रूटनी और प्रेशर का सामना करना पड़ता है। इस बयान के बाद नेपोटिज्म डिबेट फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी है। बॉबी डेवल की बंदर को मिला जुला रेस्पॉन्स। अनुराग काश्यप और बॉबी डेवल की फिल्म बंदर को लेकर काफी उम्मीदें थी, लेकिन शुरुआती बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। हालांकि फिल्म की कहानी और बॉबी डेवल की परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है। कई बार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि दर्शकों के दिलों में हिट होती है। कतरों के खिलाड़ी 15 शुरू होने से पहले ही चर्चा में। रियलिटी टीवी की दुनिया में कटरों के खिलाड़ी 15 की तैयारी जोरों पर है। प्रतिभागियों के नाम सामने आने लगे हैं और ऋत्विक धनजानी ने भी शो में जाने को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की है। बतवारा 1947 को लेकर बड़ी उत्सुकता। सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म बतवारा 1947 को लेकर चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाडर्स डे के आसपास फिल्म को एक विशेष प्रोमो रिलीज किया जा सकता है। तो गदर के बाद सनी देओल की हर देशभक्ति फिल्म अपने आप चर्चा में आ जाती है। दोस्तों, बने रहिए फिल्मी गपशप आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। फिलहाल लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों हम लौटेंगे फिल्मी गपशप के शेष भाग के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। कृपया बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pay Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है फिल्मी गपशप में। दोस्तों, आज मैं आपको क्रिटिक्स की नहीं बल्कि ट्विटर से निकलकर आने वाले आम जनता की राय बताने जा रहा हूं। पिछले शुक्रवार यानी 5 जून को रिलीज हुए कुछ फिल्मों के पब्लिक रिव्यू को सबसे पहले हम बात करते हैं है जवानी तो इश्क होना है के बारे में। पब्लिक क्या बोल रही है, थिएटर से निकलकर आने वाले दर्शकों की राय दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है। कुछ पॉजिटिव रिएक्शन, वरुण धवन की कॉमिक टाइमिंग पसंद आई, पूजा हेगड़े की स्क्रीन प्रेजेंस को खूब तारीफ हो रही है, फिल्मली ऑडियंस और स्क्रीन दर्शकों को फिल्म का हल्का पुल्का मनोरंजन पसंद आ रहा है। कई दर्शकों ने इसे टाइम पास, एंटरटेनर और वन टाइम वॉच बताया और कुछ नेगेटिव रिएक्शन भी आए हैं। युवा दर्शकों का एक बड़ा वर्ग फिल्म को आउटडेटेड कॉमेडी बता रहा है। फर्स्ट हाफ को कई लोगों ने स्लो और स्ट्रेच बताया। सोशल मीडिया पर क्रिंज कॉमेडी शब्द काफी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप गोविंदा डेविड धवन स्टाइल वाली पुरानी मसाला कॉमेडी के फैन हैं तो मजा आ जाएगा, लेकिन अगर आप मॉडर्न स्टोरी टेलिंग ढूंढ रहे हैं तो शायद फिल्म आपको उतनी इम्प्रेस ना करे। तो इसे पब्लिक रेटिंग ने 3 out of 5 दिया है। अगला है द बंडर, बॉबी देओल और अनुराग कश्यप। अब आते हैं इस वीकेंड की सबसे चर्चित लेकिन सबसे डिवाइडेड फिल्म पर, पब्लिक रिव्यू क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले पॉजिटिव रिएक्शन की बात करें तो बॉबी देओल की एक्टिंग को लगभग सभी लोग सराहा रहे हैं। सीरियस सिनेमा देखने वाले दर्शकों को फिल्म का सब्जेक्ट और इंटेंसिटी पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर कई व्यूअर्स इसे बोल्ड और

स्पोर्ट्स ड्रामा एंगल पसंद आ रहा है, लेकिन कुछ दर्शकों का कहना है कि फिल्म की गति बीच में धीमी पड़ जाती है। तो दोस्तों, यह था पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्मों की रिव्यूज के बारे में। आप बने हुए हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। फिलहाल लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं कोई आपसा फिल्म से। ये बेहद खूबसूरत गीत आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी कक्षा। दोस्तों, आप बात करते हैं बॉलीवुड सॉन्ग रील्स और ऑडियो ट्रेंड जो इस वक्त छाए हुए हैं। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक रील्स या मौज पर एक्टिव हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ गाने हर दूसरे वीडियो में सुनाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं इस समय कौन कौन से गाने और ऑडियो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे पहला है तौबा तौबा, ट्रेंड कैटेगरी वेडिंग रील्स और डांस वीडियोस। विक्की कौशल के आइकॉनिक डांस मूव्स वाला ये गाना अभी भी रील्स की दुनिया का सुपरस्टार बना हुआ है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल ग्रूम एंट्री वीडियोस, वेडिंग डांस रील्स, फैशन वॉक रील्स और बॉयज एटीट्यूड वीडियोस में। तो एक साल बाद भी अगर कोई गाना रील्स पर राज कर रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें कुछ खास बात जरूर है। अगला है आवन जवान। ये गाना रोमांटिक कंटेंट क्रिएटर्स का फेवरेट बन चुका है, ट्रेंडिंग इन कपल रील्स, ट्रैवल वीडियोस, प्री वेडिंग सूट्स और स्लो मोशन लव एडिट्स। ये वो गाना है जिसे सुनते ही क्रिएटर्स अपने ड्राफ्ट फोल्डर खोल देते हैं। अगला है सजना वे। इंस्टाग्राम पर सॉफ्ट रोमांटिक वाइब्स वाले रील्स में ये गाना खूब चल रहा है। मोबाइल में इसे नेचर रील्स, सनसेट वीडियोस, फ्रेंडशिप मेमोरीज और इमोशनल स्टोरी टेलिंग में काफी यूज कर रहा है। अगला है गिस गिस गिस। ये अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह का ये एनर्जेटिक ट्रैक छोटे शहरों और रीजनल क्रिएटर्स के बीच जबरदस्त वायरल है। ट्रेंड है फनी रील्स, वेडिंग फंक्शन और ग्रुप डांस वीडियोस में, जहां सारी वहां गिस गिस। तो दोस्तों, ये था अभी का सबसे ट्रेंड करने वाले बॉलीवुड सॉन्ग्स। फिलहाल फिल्मी गपशप में एक और गीत सुनते हैं। आइए सुनते हैं कल होना फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत। आवाज दी है साधना सरगम, मधुश्री और सोनू निगम।

दोस्तों आप बने हुए हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। आइए एक नज़र देखते हैं इंडियन टेलीविजन वर्ल्ड के कुछ ताज़ातरीन अपडेट्स पर, एक नज़र यानी छोटे पर्दे की कुछ जानकारी। अनुपमा में फिर से रीयूनियन ट्रैक की चर्चा। टीवी के सबसे चर्चित शो में से एक अनुपमा में इन दिनों मैन अनुपमा अनुज रीयूनियन को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। हाल के प्रोमो में प्रेम का चैलेंज और परिवार के बीच बढ़ता इमोशनल ड्रामा दर्शकों को ध्यान खींच रहा है। सारेगामापा लिल चैंप्स ग्रैंड फिनाले बज। सारेगामापा लिल चैंप्स का ग्रैंड फिनाले चर्चा में है और टॉप फिनालिस्ट के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। शो के कई परफॉर्मेंसेस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शिल्पा शेट्टी का नया शो चर्चा में। शिल्पा शेट्टी इन दिनों अपने नए कुकिंग कॉमेडी शो में हेना को लेकर चर्चा में है। इस शो में सेलिब्रिटी मर्डर्स और उनके बच्चे साथ में खाना बनाते और मजेदार चैलेंजेस करते दिखाई देंगे। ऑडियंस को फैमिली एंटरटेनमेंट का नया फ्लेवर मिलने वाला है। शिल्पा शिंदे फिर सुर्खियों में। टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे से जुड़ा मामला एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडस्ट्री के कई लोगों ने इस मामले पर अभिनेत्री अपनी प्रतिक्रिया दी है कि ये खबर टीवी सर्कल्स में लगातार बनी हुई है। तो दोस्तों आज की फिल्मी गपशप में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और गीत फिल्म जब वी मेट से। आवाज दी है श्रेया घोषाल ने।

तो दोस्तों इसी के साथ आज के फिल्मी गपशप कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने वर्ष 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच चुके हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन गतिविधियों के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में वर्ष 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। अमरीकी सेना ने होर्मूज जलडमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माने जाने वाले 2 ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालेंस्का को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से मात दी। इस उपलब्धि के साथ ही एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 1992 में 18 साल की मोनिका सेलेस ने यह खिताब अपने नाम किया था। उधर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेवियो कोबेली आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने कर्नाटक के तटीय हिस्सों, केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में आज लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. The Home Minister also directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with a ruthless approach. The National Testing Agency has refuted claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, the NTA said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families. A report.
3: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts and content to the concerned platforms and to cybercrime authorities for immediate takedown and action. The agency has advised candidates and parents not to engage, pay or forward any such message and not to fall prey to the fraudulent solicitations. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: The government today said that Indian households continue to receive cooking gas at among the lowest prices globally despite a sharp rise in international LPG prices. In a statement, the Petroleum and Natural Gas Ministry said that the Indian cylinder is cheaper than in any neighboring country and far below the price in advanced economies such as the United States, Australia and Canada. It noted that a beneficiary of the Pradhan Mantri Ujwala Yojana pays ₹642 for a 14.2 kg LPG cylinder after receiving a direct benefit transfer of ₹300 on the first four refills annually, while the retail price for a general consumer in Delhi stands at ₹942. Notably, the price of domestic LPG cooking gas has been increased by ₹29 per 14.2 kg cylinder. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar virtually handed over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal under the reconstruction program post-2015 earthquake after meeting with his visiting counterpart Shishir Khanal in New Delhi. The two leaders jointly launched the linkage between UPI India and the National Payments Interface of Nepal for facilitating cross-border personal remittances. Both leaders also witnessed the exchange of a memorandum of understanding between Digital India Bhashini and Kathmandu University for co-creating the national digital infrastructure for a voice-first language translation platform for Nepal. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has said that BJP government will undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state such as Dakshineshwar and Kalighat temples. He said work has already commenced to elevate the Ganga Sagar Mela to international standards, while facilities at prominent religious landmarks like Dakshineshwar and Kalighat will be significantly upgraded. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall at isolated places over coastal Karnataka, Kerala and Mahi today. The weather agency also predicted thunderstorms and lightning today in places over Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Telangana, West Bengal and Sikkim. Heatwave conditions are expected today in parts of coastal Andhra Pradesh and Odisha. Warm night conditions are likely to prevail over Odisha tonight. In men's cricket, India were 398 for 3 in their first innings on day 2 of one-off test against Afghanistan in New Chandigarh when reports last came in. Centuries from KL Rahul and captain Shubman Gill have put the men in blue in a strong position. Sai Sudarshan also contributed 81 before missing out on a maiden test century. In SAFF Women's Championship 2026 final, India defeated the defending champions Bangladesh 3-1 to win the title for a record 6th time. The match was played in Madgaon, Goa yesterday. And that is the end of this news bulletin.
4: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम लौटेंगे आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
5: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
6: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
7: बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
8: गीत संगीत
9: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
8: प्यार भरे अल्फाजों में
9: दिल से दिल की बात
8: बस आपके नाम
9: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

0: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: नमस्कार प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपका अपना आरजे कारग और एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आप सबका फेवरेट म्यूजिकल प्रोग्राम रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों, ये प्रोग्राम है जहां माइक्रोफोन से ज्यादा बोलते हैं आपकी टेक्स्ट मैसेजेस। जी हां, आप हमें एसएमएस के जरिए भेजते हैं अपने पसंद के गीत, अपने दिल की बात, अपने दोस्तों और परिवार वालों के लिए डेडिकेशन, और हम उन्हें पहुंचाते हैं हजारों श्रोताओं तक। हमारा नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9436887808। चाहे कोई पुराना एवरग्रीन नगमा हो, 90s का रोमांटिक हिट हो, या फिर आज के जमाने के सुपरहिट गाना आपकी पसंद की हमारी प्लेलिस्ट बनती है, तो देर किस बात की, भेजिए हमें मैसेज के जरिए। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आइए लेते हैं आज के पहले मैसेज को। और ये पहला मैसेज हमें आया है सानू प्रधान जी की तरफ से, गोपुर असम से। सानू जी, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका दिल से स्वागत है। आपकी फरमाइश है बैरन गीत। लेकिन दोस्त संजू जी, आपने मैसेज में फिल्म या सिंगर का नाम मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी से इसी टाइटल का उपलब्ध वर्जन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये गीत जरूर पसंद आएंगे। तो सानू प्रधान जी, आपकी इस प्यारी सी फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

और दोस्तों अब बारी है एक और खूबसूरत रिक्वेस्ट की। ये मैसेज भेजा है हर्षित गोस्वामी ने बोकाघाट असम से। हर्षित जी, अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका दिल से स्वागत है। इनकी फरमाइश है आज के दौर के एक बहुत ही पॉपुलर और सोलफुल गीत साहिबा, और इस गीत को अपनी दिलकश आवाज दी है आदित्य रिखारी ने। दोस्तों ये गाना अपने सिंपल मेलोडी और हार्टफेल्ट लिरिक्स की वजह से यंग स्टार के बीच काफी पसंद किया जाता है। तो हर्षित गोस्वामी जी, आपकी इस लाजवाब फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। और दोस्तों, अब आया है एक प्यारा सा मैसेज। ये मैसेज हमें मिला है हमारे एक श्रोता की तरफ से, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है। कोई बात नहीं दोस्त, आपकी फरमाइश हम तक पहुंच गई है और हमें खुश है कि आपने हमें अपने म्यूजिकल सफर का हिस्सा बनाया है। तो दोस्त, आप अगली बार अपना नाम और पता जरूर लिख भेजिए। आपने हमें आज रिक्वेस्ट किया है तू चले गीत को सुनने का, लेकिन आपने फिल्म या सिंगर का नाम भी अभी तक हमें नहीं बताया है, इसलिए हम अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी से इसी टाइटल का सबसे लोकप्रिय वर्जन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी यह पसंद आपको जरूर पसंद आएगी। तो हमारे प्यारे एनोनिमस लिसनर, आपकी इस खूबसूरत फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आप सुनते हैं

और दोस्तों अब बारी है अगले मैसेज की। यह मैसेज हमें आया है अमाल बासुमतारी ने। अमाल जी, अरुण एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस गीत को अमाल जी ने डेडिकेट किया है अपने दोस्तों रमेश, रूनू, बिमोल, बैकुन, हितेंद्र, अंजुली, कल्पना, निहारिका और कविता को। इनकी पसंद है एक बहुत ही रोमांटिक और मधुर गीत पहली दफा हलचल फिल्म से। दोस्तों ये गाना प्यार के खूबसूरत एहसासों को बहुत ही प्यारे अंदाज में बयां करता है और सुनने वालों के दिल को चू लेता है।

दोस्तों आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। और दोस्तों अब बारी है एक और खूबसूरत फरमाइश की, और ये मैसेज हमें भेजा है रमेश पात्रो, रोनू पात्रो और लकी ने गोलाघाट असम से। आप तीनों को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल से नमस्कार। और आप तीनों ने फरमाइश की है जाने क्या चाहे मन, गीत को सुनने का फिल्म प्यार के साइड इफेक्ट से। दोस्तों ये गाना अपनी सॉफ्ट मेलोडी और गहरे एहसासों की वजह से आज भी म्यूजिक लवर्स के बीच में बहुत पसंद किया जाता है। तो रमेश, रुनू और लकी जी, आपकी इस प्यारी फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

और दोस्तों, अब बारी है एक अगली मैसेज की। और ये मैसेज हमें भेजा है अमाल बसुमतारी ने। अमाल जी, अरुण एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस गीत को अमाल जी ने डेडिकेट करना चाहा है अपने दोस्त रमेश, जोगेंद्र, बिमल और बायकुंत को। इनकी पसंद एक बहुत ही रोमांटिक और मेलोडियस गीत है, ओ चांदनी, फिल्म जानम समझा करो से। तो अमाल बसुमतारी जी, आपकी इस प्यारी फरमाइश और खास डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रमेश, जोगेंद्र, बिमल और बायकुंत जी, ये गीत आप सभी के नाम।

दोस्तों इस वक्त आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। और अगला मैसेज हमें आया है नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश से, भेजने वाले हैं तार सोनिया जी। आपने गीत चुना है तू जाना ना पिया गीत को, सिंगर के नाम है किंग और आपने इस गीत को डेडिकेट किया है आपके दोस्त दम्मी लोमरी जी को। तो तार सोनिया जी आपके लिए और आपके दोस्त दम्मी लोमरी के लिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, अब बारी है एक और खूबसूरत फरमाइश की। यह मैसेज हमें भेजा है मिस आलम ने। मिस आलम जी, आपको अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल से स्वागत है। आपने अपने मैसेज में सिर्फ गाने का नाम तेरे लिए लिखा है, लेकिन आपने फिल्म या सिंगर का नाम मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम अपनी म्यूजिक लाइब्रेरी से इसी टाइटल का एक बहुत ही मशहूर और दिल को छू लेने वाला गीत आपके लिए चुन रहे हैं, तेरे लिए, फिल्म बीर जरा से। तो मिस आलम जी, उम्मीद है कि हमारी तरफ से चुना गया यह वर्जन आपको जरूर पसंद आएगा।

दोस्तों बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। और ये मैसेज हमें आया है हमारे रेगुलर लिसनर्स गेरोन तेरोन जी, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट डोलामारो असम से। आपने हमें सॉन्ग फरमाइश की है हाले दिल तुमसे कहने गीत को फिल्म सलामी से। तो गेरोन तेरोन जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन डिमांड आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के रेडियो ऑन डिमांड का अगला और अंतिम मैसेज की ओर। ये मैसेज हमें आया है आरब जी की तरफ से, सेंकी पार्क ईटानगर से। आरब जी ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है बॉर्डर 2 फिल्म का संदेश से आते हैं गीत को। आरब जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनवाते हैं आपके फरमाइश पर आज के रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत को।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर अतर तथा तकनीकी अभियंता बिमल चंद्र शर्मा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आगे के सफर में आपके साथ होंगे आरजे पूरा तुनिया जी। आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो साथी कारगर रिबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी।

0: दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालिंस्का को सीधे सेट्स में 6-3, 6-2 से हराया। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 102 ओवर में 5 विकेट पर 456 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSS Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. The Home Minister also directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with a ruthless approach. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar virtually handed over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal under the reconstruction program post-2015 earthquake after meeting with his visiting counterpart Shishir Khanal in New Delhi. The two leaders jointly launched the linkage between UPI India and the National Payments Interface of Nepal for facilitating cross-border personal remittances. Both leaders also witnessed the exchange of a memorandum of understanding between Digital India Bhashini and Kathmandu University for creating the national digital infrastructure for a voice-first language translation platform for Nepal. The National Testing Agency has refuted claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advanced access or sale of NEET UG 2026 re-examination question paper, a report.
2: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts and content to the concerned platforms and to cybercrime authorities for immediate takedown and action. The agency has advised candidates and parents not to engage, pay or forward any such message and not to follow fall prey to the fraudulent solicitations. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: The government today said that Indian households continue to receive cooking gas at among the lowest prices globally, despite a sharp rise in international LPG prices. In a statement, the Petroleum and Natural Gas Ministry said that the Indian cylinder is cheaper than in any neighboring country and far below the price in advanced economies such as the United States, Australia and Canada. It noted that a beneficiary of the Pradhan Mantri Ujwala Yojana pays ₹642 for a 14.2 kg LPG cylinder after receiving a direct benefit transfer of ₹300 on the first four refills annually, while the retail price for a general consumer in Delhi stands at ₹942. Notably, the price of domestic LPG cooking gas has been increased by ₹29 per 14.2 kilogram cylinder. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has said that BJP government will undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state, such as Dakshineshwar and Kali Ghat temples. He said work has already commenced to elevate the Ganga Sagar Mela to international standards, while facilities at prominent religious landmarks like Dakshineshwar and Kali Ghat will be significantly upgraded. National award-winning Malayalam actor Saleem Kumar passed away in Kochi yesterday. He was undergoing treatment at a private hospital. He was 57. Kumar died around 10:45 p.m. yesterday. Saleem Kumar, who initially gained attention through mimicry stages and television comedy shows, entered cinema in 1996. In a career spanning three decades, he acted in around 350 films. By presenting humor-centric characters in his unique style, Saleem Kumar gave them a distinct dimension. In SEF Women's Championship 2026 final, India defeated the defending champions Bangladesh 3-1 to win the title for a record sixth time. The match was played in Madgaon, Goa yesterday. In men's cricket, India were 456 for 6 in their first innings on day 2 of the one-off test against Afghanistan in New Chandigarh when reports last came in. Centuries from KL Rahul and Captain Shubman Gill have put the men in blue in a strong position. Sai Sudarshan also contributed 81 before missing out on a maiden test century. Earlier, India won the toss and elected to bat first. The one-off test match is being played outside the World Test Championship cycle. And that is the end of this news bulletin.
3: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं आज की दूसरी प्रसारण सभा में। दोस्तों, इससे पहले पहली प्रसारण सभा में बने हुए थे आरजे कारगर के साथ। उम्मीद करती हूं आरजे कारगर के साथ आपका सफर बहुत ही मनोरंजक और सुहाना रहा होगा। अब इस सफर को जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज की दूसरी प्रसारण सभा। और इस सफर में आपके साथ रहूंगी मैं, आपके रेडियो साथी आरजे तुन्या। दोस्तों, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा अजपीते में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक एलताली।

तथा तकनीकी अभियंता एचएम भूषण। रोजाना की तरह आज भी सभा में हम आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दूसरी प्रसारण सभा का पहला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फिल्म लहर, जहां हम आपको सुनवाएंगे हिंदी सिनेमा के वो गीत जो कभी मुस्कान बन जाते हैं तो कभी यादों की धुन। हर धड़कन हर एहसास के लिए यहां कोई ना कोई गाना आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए ऐसे एक खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गीत आप सुन पाएंगे रन फिल्म का दिल में जो बात है कह दो, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में।

दोस्तों बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म लहर। दोस्तों ये सेगमेंट आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने का सुझाव आपके पास हो आप वो भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। दोस्तों हमारा नंबर है 9436887808। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9436887808। आप हमें अपना फीडबैक जरूर भेज सकते हैं। तो चलिए अब फिल्म लहर कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, क्या दिल ने कहा फिल्म का टाइटल ट्रैक, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

0: दोस्तों इसी के साथ ही फिल्म लहर कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल के बाद। और अब आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम। तो चलिए कुछ पल के लिए हिंदी फिल्म सॉन्ग से ब्रेक लेते हैं और एंजॉय करते हैं कुछ सूदिंग वेस्टर्न सॉन्ग्स।
1: Hello everyone and welcome to Akashwani Itanagar. You're listening to Western Melodies and I'm your host Coco. Today's playlist is packed with unforgettable pop hits filled with love, heartbreak, confidence, memories and powerful emotions. From classic favorites to energetic party songs, we got everything for every mood. So relax, turn up the volume and enjoy the music with us. Hall of Fame by The Script featuring will.i.am is an inspiring song about dreams, hard work and believing in yourself. The lyrics motivate listeners to push beyond limits and chase success fearlessly. Powerful, uplifting and emotionally, this song became an anthem for motivation and determination around the world.

0: दस्ताभ्यास सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम या आकाशवाणी नगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: Until next time, stay safe, stay happy and keep listening to good music. Bye-bye.

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said that the joint commission between India and Indonesia is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. The External Affairs Minister made these opening remarks after co-chairing India-Indonesia Joint Commission meeting in New Delhi. He said that both nations celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year.
3: Our joint commission is happening after 4 years, and I think it's important to recognize that in those 4 years, we made good progress in our bilateral relations. Today, I look forward to extensive discussions with you, covering the full spectrum of our bilateral cooperation, from political to defense and security, maritime trade and investments, health and pharmaceuticals, food security, as well as tourism, education and cultural cooperation.
2: The government today said that Indian households continue to receive cooking gas at among the lowest prices globally, despite a sharp rise in international LPG prices. In a statement, the Petroleum and Natural Gas Ministry said that the Indian cylinder is cheaper than in any neighboring country and far below the price in advanced economies such as the United States, Australia and Canada. It noted that a beneficiary of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, PMUY, pays 642 rupees for a 14.2 kilogram LPG cylinder after receiving a direct benefit transfer of 300 rupees on the first four refills annually, while the retail price for a general consumer in Delhi stands at 942 rupees. Today is the last date to submit applications for verification of issues observed and re-evaluation of answers on the post-result services portal for CBSE Class 12 examination 2026. In a social media post, Central Board of Secondary Education said that the portal will remain open until midnight. It asked the students to complete and submit their applications before the deadline. The Central Bureau of Investigation, CBI, yesterday conducted searches at six premises at Chandigarh, Panchkula and Delhi NCR region in connection with the ongoing investigation with IDFC First Bank and AU Finance fraud case. The case is related to 661 crore rupees misappropriation fraud and siphoning of the government funds in 8 departments of Haryana government and 2 departments of Municipal Corporation Chandigarh and Crest Chandigarh. In a statement, the CBI said that the search operations were carried out at residential premises of senior public servants of Haryana Cadre and a private consultant firm and its director in connection with irregularities committed and with regard to receipt of proceeds of crime. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya today participated in the 77th edition of Fit India Sundays on Cycle initiative in New Delhi this morning. Talking to the media, the minister said that cycling keeps the planet clean and offers a solution to the major problem of traffic congestion. Actor Vikrant Amasi, who also participated in the Fit India Sundays on Cycle, described the initiative as incredible and said it has now become a movement. World Food Safety Day is being observed today globally. The day highlights food safety as a shared right and responsibility and serves as a powerful opportunity for collective action. This year's theme, From Problem to Solution, Safe Food Everywhere, highlights the importance of ensuring food safety through cleanliness and scientific practices from farm to plate. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda today reaffirmed the government's commitment to safe and hygienic food for a healthier future. Mr. Nadda urged citizens to adopt healthy eating habits and contribute to building a fit and self-reliant India. In cricket, India lost 3 wickets in the morning session to reach 475 for 6 at lunch on the second day of the one-off test against Afghanistan at Mullapur in New Chandigarh today. And that is the end of this news bulletin.
4: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से. अब बंद में हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात.
5: दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
6: गीत संगीत
7: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
6: प्यार भरे अल्फाजों में
7: दिल से दिल की बात
6: बस आपके नाम
7: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दस्तरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेहद ही एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ, ढोली तारो ढोल बाजे हम दिल दे चुके सनम फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौड़ और करसन सरघाटिया की आवाजों में।

दोस्तों इस गीत के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीत माला।

दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फौजी भाई बहनों का डेली कार्यक्रम गीत माला में। इस खास कार्यक्रम में हम अपना सलाम भेजते हैं उन वीर जवानों को जो देश की सुरक्षा के लिए हर पल तैयार रहते हैं, हमारे भारतीय सेना के बहादुर फौजी भाइयों और बहनों को। चलिए शुरू करते हैं पहला गीत के साथ, और ये गीत हर उस फौजी के नाम जो तिरंगा को अपनी जान से भी ज्यादा मानते हैं। पेश है 83 फिल्म का लहरा दो अरिजीत सिंह की आवाज में।

दोस्त अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हमारे फौजी भाई बहनों के लिए सजाया गया ये खास कार्यक्रम गीतमाला। दोस्त हम सब मूवीज देखने जाते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा गाना, थोड़ा डांस, थोड़ा एक्शन और थोड़ी कॉमेडी। तीन घंटे ऐसे में बैठकर पॉपकॉर्न के साथ मजा लेना बस इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी कुछ फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, वो दिल को छू जाती है, सच सोच बदल देती है और सोसाइटी पर गहरा असर छोड़ जाती है। कुछ फिल्में हमें इमोशनल कर देती है, कुछ हमें जगाती है और कुछ हमें सिस्टम से सवाल पूछने की हिम्मत देती है। और एक ऐसी ही फिल्म है रंग दे बसंती। ये फिल्म सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, ये एक जज्बा था, यूथ पावर का एक पावरफुल मैसेज था। फिल्म ने दिखाया कि जब देश के युवा उठ खड़े होते हैं तो बदलाव जरूर आता है। दोस्ती, सेक्रीफाइस और देशभक्ति का जो इमोशन इस फिल्म ने दिया वो आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाका नहीं किया बल्कि सोसाइटी में भी एक नई सोच जगाई। कैंडल मार्च का जो सीन हमने इस फिल्म में देखा वो आज रियल लाइफ पीसफुल प्रोटेस्ट का सिंबल बन चुका है। आज भी जब लोग किसी इनजस्टिस के खिलाफ शांति से प्रोटेस्ट करते हैं तो हाथ में मोमबत्ती लेकर खड़े होते हैं और कहीं न कहीं उसका इंस्पिरेशन इस फिल्म से आता है। तो आइए सुनते हैं रंग दे बसंती फिल्म का टाइटल ट्रैक दलन महेंद्री और चित्रा की आवाज में।

फिल्म में आमिर खान ने एक ऐसा टीचर का किरदार निभाया जो सिर्फ पढ़ाता नहीं समझाता भी है, और वही समझ एक बच्चे की जिंदगी बदल देती है। इस फिल्म ने पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे की नीड्स भी अलग होती है।

दोस्तों आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सुन रहे हैं हमारे फौजी भाई बहनों का खास कार्यक्रम गीतमाला। आइए अब सुनते हैं फिल्म बॉर्डर का बहुत ही आइकॉनिक गाना संदेश से आते हैं। ये गाना सिर्फ सुरों का खेल नहीं बल्कि देशभक्ति और जज्बात का जिंदा सबूत है। इसमें दिखाया गया है कैसे एक छोटी सी चिट्ठी अपने परिवार को देश के वीर जवानों की याद दिलाती है और घर वालों के लिए उम्मीद और इंतजार का संदेश बन जाती है। हर सुर हर बोल आपको उन मोमेंट्स के करीब ले जाता है जब देश के लिए बलिदान और परिवार के लिए मोहब्बत दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। पेश है संदेश से आते हैं सोनू निगम और रूप कुमार राठौर की आवाज में।

दोस्तों इस गीत के साथ ही फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं 60s, 70s और 80s के दशक के कुछ खूबसूरत गीतों को। दोस्तों अगला गीत आप सुन पाएंगे पकेजा फिल्म का चलते चलते यूं ही कोई। और दोस्तों हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर किसी फिल्म को एक लैंडमार्क कहा जाता है तो पकीज़ा उस लिस्ट में शान से खड़ी नजर आती है। 1972 में रिलीज हुई ये फिल्म सिर्फ खूबसूरती, सैयारी और संगीत तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज के सामने एक गहरा सवाल रख गई। पकीज़ा पूछती है, क्या एक तवाइफ, एक कलाकार और एक औरत समाज में उतनी ही इज्जत की हकदार नहीं होती जितनी एक शरीफ और पर्दे में रहने वाली महिला। ये फिल्म उस दोहरे मापदंड को बेनकाब करती है, जहां एक पुरुष प्रधान समाज उन औरतों को अपनाती भी है और उन्हें ही नीचा भी दिखाती है। उस दौर के दर्शकों के लिए ये सोच काफी कठिन थी, क्योंकि पर्दे पर ज्यादातर सांस्कारिक और आइडियल किरदार ही दिखाए जाते थे। पकीज़ा ने पहली बार इतनी संजीदगी से एक तवाइफ के जज्बात, उसका दर्द और उसकी इज्जत की तलाश को पेश किया। इसीलिए पकीज़ा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि अपने वक्त से काफी आगे की सोच का आईना बनकर सामने आई। दोस्तों चलिए सुनते हैं पकीज़ा फिल्म का ये गाना चलते चलते यूं ही कोई, लता मंगेशकर की आवाज में।

0: बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित को ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया था। पेश है अलका याग्निक की आवाज में 1 2 3।
1: नमस्कार,
2: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
2: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
2: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
2: कैसे?

0: एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह।
1: दोस्तों इसी के साथ ही हिंदी क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रम ही समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ पुराने नगमों और उससे जुड़े कुछ किस्सों के साथ हमने आप सबका भरपूर मनोरंजन किए होंगे। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों लौटेंगे अगले कार्यक्रम के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद।

दोस्तों, इसी के साथ ही हमने शुरू कर लिया है हमारा अगला कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और पहला गीत आप सुन पा रहे हैं बजरा मस्तानी फिल्म का दीवानी मस्तानी, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने।

0: करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष ₹300 की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से ₹642 का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत ₹942 है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर ₹29 की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत ₹942 हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्म्यूटिकल्स

0: को शामिल किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातिये क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से

0: सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। अब बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों सभा के इस भाग में लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हिट ऑफ 90s। नाइन्टीज का दौर सिर्फ एक डेकेड नहीं था दोस्तों, बल्कि एक इमोशन था, एक ऐसी वाइब जो हर मेमोरी के साथ जुड़ी हुई है। पहला प्यार हो, दिल टूटने का दर्द हो, या शादी में कजिन्स के साथ डांस, हर मोमेंट का एक स्पेशल 90s सॉन्ग हुआ करता था। और शायद इसीलिए 90s के गाने आज भी दिल के इतने करीब है। सिंपल मेलोडीज, हार्टफेल्ट लिरिक्स और वो इमोशंस जो सीधा दिल को छू जाता है। चाहे ड्रीमी पहला नशा हो, एनर्जेटिक दिप दिप बरसा पानी, या फन फील्ड ओ जाने जाना, हर मूड के लिए एक परफेक्ट 90s सॉन्ग जरूर हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं नॉस्टैल्जिया की उस म्यूजिकल जर्नी पर और एंजॉय करते हैं कुछ एवरग्रीन 90s हिट्स। और पहला गाना आप सुन पाएंगे अंदाज फिल्म से, आज कहना जरूरी है, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

दोस्तों अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट ऑफ 90s। दोस्तों ऐश्वर्या राय ने भी इस समय के दौरान यानी 90 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की थी। और क्या आप जानते हैं कि वो बचपन से कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, ना वो बॉलीवुड बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। वो तो मेडिकल साइंस परसू करना चाहती थी और जियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। और एक जमाना ऐसा भी था जब उन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ने का सोचा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई उन्हें खुद ब खुद मॉडलिंग की ऑफर्स आने लगी उनकी खूबसूरती को देखकर, और इसी तरह वो मॉडलिंग में चली आई। वैसे एक रोल था जिन्हें

उन्होंने डिक्लाइन किया था, जिसे वो अभी भी रिग्रेट करती है कि अगर उसने वो रोल किया होता तो शायद एक अलग ही पहचान बनती उनकी बॉलीवुड में 90s के जमाने में। और वो रोल था टीना का रोल, यानी रानी मुखर्जी का रोल फिल्म कुछ कुछ होता है में। पहले ये रोल ट्विंकल खन्ना को दिया गया था, उन्होंने मना कर दिया, तो ये रोल ऐश्वर्या राय के पास चला गया था, उन्होंने भी मना किया, तो ये रोल आखिर में रानी मुखर्जी के पास चला गया। वेल दोस्तों, जो भी हुआ हो, आज हम ऐश्वर्या राय को जानते हैं एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो चलिए उन्हीं की फिल्म से सुनते हैं ये गाना चांद छुपा बादल में, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, और फिल्म है हम दिल दे चुके सनम।

0: दोस्तों, जब किसी को देखते ही हमें प्यार हो जाता है, उसे हम लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। यानी पहली नजर में प्यार, वो पहली झलक, वो पहला एहसास, जब दिल बिना सोचे समझे बस किसी और का हो जाता है। लेकिन गाने गाने इस एहसास को कुछ इस तरह बयां करती है।
1: ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये कायनात, कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम?

दोस्तों इसी के साथ ही हिट ऑफ 90s कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस। उसके तुरंत बाद 3:00 आप सुन पाएंगे मिसमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। हम लौटेंगे 3:30 पर कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग के साथ। सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और नजर डालते हैं इस वक्त कौन से फिल्म्स ट्रेंड कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मां बहन फिल्म की। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित और टैलेंटेड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी के साथ नजर आ रही डार्क कॉमेडी क्राइम ड्रामा मां बहन फिल्म की कहानी आदर्श कॉलोनी में रहने वाली रेखा और उसकी दो बेटियों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी तब उलट पुलट हो जाती है जब उनके घर के किचन में एक लाश मिल जाती है। इसके बाद शुरू होता है सस्पेंस, कॉमेडी और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का सिलसिला। फिल्म में माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, रवि किशन और धारणा दुर्गा मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रही है। डायरेक्टर है सुरेश त्रिवेणी, जो पहले तुम्हारी सुल्लू और झालसा जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की परफॉर्मेंसेस की तारीफ की है। कहानी को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिला, लेकिन मां बेटी की केमिस्ट्री और डार्क ह्यूमर को लोग पसंद कर रहे हैं।

अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी फिल्म बंदर इस वक्त काफी बज क्रिएट कर रही है। फिल्म में बॉबी देओल एक ऐसे आदमी का किरदार निभा रहे हैं जो एक करप्ट सिस्टम के बीच फंस जाता है। थ्रिलर और फर्स्ट लुक ने ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है। डार्क थ्रिलर और इंटेंस स्टोरी टेलिंग के लिए मशहूर कश्यप इस बार भी एक हार्ट हिटिंग सब्जेक्ट लेकर आई है। फिल्म 5 जून को रिलीज हो चुकी है और सोशल मीडिया पर इसके कृति दोन की काफी बढ़ चढ़ कर तारीफ हो रही है। और अब बात करते हैं इस हफ्ते की मोस्ट टॉक अबाउट कॉमेडी एंटरटेनर की। देवी धवन के डायरेक्शन में बनी है जवानी तो इश्क होना है में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े लीड रोल्स में नजर आ रही हैं। फिल्म एक फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर और रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें देवी धवन स्टाइल की कॉमेडी, कन्फ्यूजन और रोमांस देखने को मिलता है। फिल्म 5 जून को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और यूथ ऑडियंस के बीच इसका काफी क्रेज देखने को मिल रही है।

और साथ ही दोस्तों बॉलीवुड में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल की। फिल्म का नया गाना ऊंचा लंबा कद फॉरएवर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड करने लगी है। ये गाना 2007 की सुपरहिट फिल्म वेलकम के आइकॉनिक सॉन्ग ऊंचा लंबा कद का रिक्रिएटेड वर्जन है, जहां ओरिजिनल गाने में अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की जोड़ी नजर आई थी। वहीं इस नए वर्जन में अक्षय के साथ दिशा पत्नी अपने डांस मूव से ऑडियंस का दिल जीत रही है। फैंस को गाने का नॉस्टैल्जिक फील काफी पसंद आ रही है। कई लोगों का कहना है कि गाना पुरानी यादों को ताजा कर देता है, जबकि नए विजुअल्स और फ्रेश प्रेजेंटेशन इसे आज के ऑडियंस के लिए भी एंटरटेनिंग बनाता है। सोशल मीडिया पर गाने के क्लिप्स और रील्स भी काफी तेजी से वायरल हो चुकी है। इसी के साथ बॉलीवुड में एक और डिबेट भी शुरू हो गई है। कई फिल्म मेकर्स और म्यूजिक लवर्स का मानना है कि पुराने हिट गानों के रिमेक्स और रिक्रिएशंस की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ लोग इसे नॉस्टैल्जिया का सेलिब्रेशन मानते हैं, जबकि कुछ लोग ओरिजिनल म्यूजिक की कमी पर सवाल उतार रहे हैं। वेलकम टू द जंगल की बात करें तो फिल्म अपनी मैसिव स्टार कास्ट की वजह से काफी सुर्खियों में रही। अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लेबर,

सिद वर्सी, राजपाल यादव और कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। कॉमेडी और एंटरटेनमेंट से भरपूर ये फिल्म अगले महीने थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ऑडियंस में इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। इस फिल्म का एक और गाना है खिस खिस खिस, भी इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। भोजपुरी फ्लेवर वाले इस ट्रैक को ऑडियंस का मिक्स्ड बट इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स मिल रही है और ये गाना अब सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रेंड कर रही है। दोस्तों बॉलीवुड अपडेट में आज बस इतना ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं वेलकम टू द जंगल फिल्म का ऊंचा लंबा कट फॉर एवर। इस गीत को गाया है आनंद राज आनंद ने और रुबई ने।

0: We miss you, Katrina. Bring the bass back.
1: दोस्तों, इसी के साथ ही बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे वंचो श्रोताओं का समाचार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होते हैं दिल से दिल की बात।

0: meeting jine gane india tika machi idarachu amaba ajo done atikachi abiyama ma pra ajimbo chipo ma chichaga hi bakha external affairs minister s jayashankar me nepal machi foreign affairs minister shisir khanal go ma delhi mane chauga ne inu esa kanena ho mama nepal ma liyo gabane atada ba ajitega na wa gaba our holuni culture heritage project done inho kani health facilities how la te ga he ba kha alo ada kani ha chi leaders me india ne nepal ma chi abiyam yuga ma pahuna bu yuga jiga upi payment link bu akawe la te ga he ba kha icha kani ha countries ma chi leaders me india ne nepal ma chi chicha ho pa ga jiga bu nepal ma voice based language translation platform ge ajitega we lane MOU atani ga he bakha central board of secondary education CBSE ma chime social media ma la hoga me etanu na holuni ma exam haya student me NH answer sheet verification done revolution atombo we alamro online ma apply we ini potela hai etani ya machi barobaji liba khaga da laga national testing agency NTA machi me lahoga me ichaho need undergraduate as a kanena nyo ta ho machi my examination akawa laga machi question paper ali bada laga hai ikhipiga da NTA me laga ne student alumbro go ali chau jacob arhunda ne वही में होगा पाहुं हाँ खुजे मिना NTH ऑफिशियल वेबसाइट मा अनाउंसमेंट अथवा तगाजी ना लगा का बुनी नहा लगन मने तामिन वेलफेयर सोसाइटी में तामिन अनाशिमा ची स्टूडेंट आंगो होलोनी में ऐतानुची APES PGT ने JE एग्जाम मा पास एगा ही बालंब्रो फेलिसिएटेड प्रोग्राम गे अगा ही बामा लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में ची एम एल ए लिखा सोनी में करो है तर शागे बने आ अंगो होलो नियालम रो नौ आजो पर हाँ गे बका या को आलम रो ची साउथ एशियन फेडरल फुटबॉल फेडरेशन तामागामा बुनी गोवा में फाइनल मैच है इंडिया ने बांग्लादेश में तामागामा इंडिया में कासों खगे गोल में आ नहीं बका इतनोची साफ वोमेन चैंपियनशिप आने तगा ही बात चागे बुता हो इंडिया में इचा साफ वोमेन चैंपियनशिप टाइटल आने गा ही बखा अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में रूट्स आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट गो आओगा गने इतनी ईटानगर कैपिटल रीजन ICR मची आओ ने आओ समा लोकल आर्टिस्ट आलम्बो में सोशल इश्यूज लही ओकोमा जिंग थुबा आजिगा डोमेस्टिक वायलेंस एमोईगा ड्रग एब्यूज थोनामा अंगाई आलम्रोची राइट्स दोने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोक्सो एक्ट आचु चिपुमा लाजिगा ने अवेयरनेस प्रोग्राम अखांदेगा ही बाखा इचा प्रोग्राम है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में लातिया कोकोमा इमुंगा थो असामिजिया लाजिओ गबाने लातिया मने प्रोग्राम अखा ही बाखा इतंचा हो अलग मौन दोबाए चंता एगो मोमाय उम्पो में अमंगवायो वाची आनु जी
1: अभी आप सुन रहे थे ईद उमिश्मी श्रोताओं का समाचार। दोस्तों अगर आप ईद उमिश्मी श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेब 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के द्वारा भी हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1।

दोस्तों, आप सुन पाएंगे हमारा अगला कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, और कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन पाएंगे बॉम्बे फिल्म का एक हो गए हम और तुम, रेमो फर्नांडिस की आवाज में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। साथ ही बता दो दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज की दूसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक एलताली तथा तकनीकी अभियंता HM भूषण। और साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा में। और तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपका अपना RJ साजिद। तो अब मुझे यानी आपकी उद्घोषिका पूरा दुनिया को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz।

0: महिंग र राइक तंगो रोक त सोसाइटी वंग नौला ताइर विकर सेक्शन वन म अमोंग म फ्री लीगल सर्विसेस कु रो रखक रुंगलांग कु म लीगल ग्रेवांसेस कमुंगलांग अवेयरनेस तगियांग म नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी र प्र इनिशिएटिव प लाम तंगो रोक त रुंगलांग इतानांग थुम र इरो आकाशवाणी इटानगर डिब्रुगढ़ मचो नम्र साई सुता चेन कचाई नम्र कोचोंग लोंगरी साई ता चेन
1: जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। हमारे प्यारे श्रोता दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी इटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। इससे पहले आप बने हुए थे आपकी अपनी आरजे पूरा दुनिया के साथ, और आपके सफर में अब जुड़ चुके हैं आपके रेडियो दोस्त साजिद इकबाल। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। दोस्तों, गुड इवनिंग ईटानगर में आज हम बात करेंगे हंसने के फायदे के बारे में।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे। दोस्तों गुड इवनिंग। ईटानगर में हम बात कर रहे हैं हंसने के फायदे के बारे में। दुनिया की सबसे अच्छी भावनाओं में से एक है तेज तेज हंसना। यह लोगों को एक साथ ला सकता है और अद्भुत रिलेशन भी बिल्ड करता है। हल्की सी खिलखिलाहट से लोग तेज हंसने तक सब कुछ एक कमरे के तापमान को बदल सकता है और हल्का भी बना सकता है। दोस्तों हजारों वर्षों से ये कहा जाता है कि हंसी एक बहुत अच्छी दवा है। हंसी हमारे न्यूरोलॉजिकल शारीरिक भावनात्मक संज्ञात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य और खुशहाली में कई तरह से मदद करती है। 2023 में यूरोपियन सोसाइटी कार्डियोलॉजी कांग्रेस में एक अध्ययन से पता चला कि हृदय रोग से पीड़ित लोग जो नियमित रूप से कॉमेडी शो देखते हैं उनके हृदय और संचार प्रणाली को गंभीर शो देखने वाले की तुलना में काफी फायदा हुआ है।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे। दोस्तों गुड इवनिंग। ईटानगर में हम बात कर रहे हैं हंसने के फायदे के बारे में। जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आपका शरीर कोर्टिसोल छोड़ता है, क्योंकि इसे तनाव हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। कोर्टिसोल को खराब समझा जाता है, लेकिन यह शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ब्लड शुगर लेवल को भी रोकने में मदद करता है, सूजन को भी कम करता है। वहीं हंसी उन तरीकों में से एक है जिससे आपका शरीर कोर्टिसोल को नियंत्रित करने में काफी मदद करता है। हंसने से आपके ऑक्सीजन का सेवन बढ़ता है, जो शरीर के सर्कुलेशन को उत्तेजित करता है और आपके कोर्टिसोल के लेवल को कम करता है। दोस्तों एक अच्छी हंसी आपके हार्ट के लिए काफी स्वास्थ्यवर्धक है। यह आपके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर आपके हृदय गति को बढ़ाकर आपके हृदय की मदद करता है। यह आर्टरी की दीवार पर प्रेशर को भी कम करता है, जो हृदय रोग से जुड़ी हुई समस्या होती है।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटनगर, जहाँ हम बात कर रहे थे हंसने के फायदे के बारे में। दोस्तों अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे इंग्लिश हिंदी न्यूज, इंग्लिश न्यूज और फिर नुक्ते श्रोताओं का समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 5:05 में कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव के साथ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12वीं के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का

उत्सव मनाया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीके पर चर्चा की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुए बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर में 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी के उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भस्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतक याला विजय को उम्मीदवार बनाया है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने का आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि यह छात्र और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठन नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों में छापा मारा। यह मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंची। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोपीय और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले से शुरू हुई यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोची में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री, स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक समीर के निर्देशन में फिल्म ईस्ट मानू

0: नरुवत्तन से सिनेमा जगत में प्रवेश किया। तीन दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदना अभिनेता के परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलती है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्से, तमिलनाडु के शेष हिस्से, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2-3 दिन के बीच मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सिर्फ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। यह मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सिर्फ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा है कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्रीय सैन्य लैंगिक समानता समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अपू गपक। In the Indonesia Joint Commission meeting is underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar and his Indonesian counterpart Sugiono are co-chairing the meeting. In his opening remarks, Dr. J. Shankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of four years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said, India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year. Indonesian Foreign Minister Sugiono also said, this is an important meeting to allow both the countries to review the progress of cooperation since the last Joint Commission meeting held in 2022. India and Indonesia shares culture, colonial history and post-independence goals of political sovereignty, economic self-sufficiency and independent foreign policy. These ties have now expanded in the realm of more sophisticated political, economic, defense and science and technology cooperation ties. Union Home Minister Amit Shah has called for a close watch on financial and property transactions along international borders. The directive came during a meeting chaired by Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern states. The government today said that Indian households continue to receive cooking gas at among the lowest prices globally despite a sharp rise in international LPG prices. In a statement, the Petroleum and Natural Gas Ministry said that the Indian cylinder is cheaper than any neighboring country and far below the price in advanced economies such as the United States, Australia, and Canada. Today is the last day to submit applications for verification of issues observed and re-evaluation of answers on the post-result services portal for CBSE Class 12 Examination 2026. In a social media post, Central Board of Secondary Education said that the portal will remain open until midnight. He asked the students to complete and submit their applications before the deadline. The Central Bureau of Investigation, CBI, yesterday conducted searches at six premises at Chandigarh, Panchkula and Delhi NCR region in connection with the ongoing investigation with IDFC First Bank and AU Finance fraud case. The case is related to 661 crore rupees misappropriation fraud and siphoning of the government funds in eight departments of Haryana government and two departments of Municipal Corporation Chandigarh and Crest Chandigarh. In a statement, the CBI said that the search operations were carried out at residential premises of senior public servants of Haryana Kedar and a private consultant firm and its director in connection with irregularities committed and with regard to receipt of proceeds of crime. Andhra Pradesh Governor Justice S. Abdul Nazir extended his warm greetings to Akashvani on the completion of its historic 90-year journey, describing the occasion as a landmark moment in the history of Indian public broadcasting. The governor praised Akashvani for its valuable contributions to society over the past nine decades. The Telugu Desam Party TDP announced three candidates for the Rajya Sabha elections scheduled to be held on the 18th of this month. TDP National President N. Chandrababu Naidu released the last list of candidates, which includes industrialist, sannyasis, educationist and Bhashya Educational Institutions Chairman Bhashyam Ramakrishna and TDP Social Media Wing Chief Chinta Kayala Vijay. World Food Safety Day is being observed today globally. The day highlights food safety as a shared right and responsibility and serves as a powerful opportunity for collective action. This year's theme, From Problem to Solution, Safe Food Everywhere, highlights the importance of ensuring food safety through cleanliness and scientific practices from farm to plate. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda today reaffirmed the government's commitment to safe and hygienic food for a healthier future. Nadda urged citizens to adopt healthy eating habits and contribute to building a fit and self-reliant India. That's all in this news bulletin. Namaskar.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार. ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है. अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे नुक्ति श्रोताओं का कार्यक्रम.
3: अब आकाशवाणी ईटानगर दीपगढ़वा नुक्ति प्रोग्राम अधूरम जाता वन मंगा सन पोतंग रे न नुक्ति कुपोचो तत्कत थजा दोपा चा सात तारीख जुन जंग खोपोचो को देपा किम किम देसिया. Prime Minister Narendra Modi ma huni pa cha ko PM Economic Advisory Council EAC member he tamna meeting tong nangwa. Are meeting ko India economic growth pa is strong bo na rang amungja idea ko nang discuss honwa. Are meeting ko life pa easy bo na diko business pa easy bo na related ko amungja reforms ko nang min discuss honwa. EAC member he ma West Asia nang deka conflicts tha India niya pura wall nang impact deka har ko nang min jaminwa. Social media post ko Prime Minister mangi ka meeting put ko India economic transformation stiko long term development related amungja issue ko nang detail ma discuss honwa. External Affairs Minister S. J. Shankar ma Nepal damnang relation pa asan damrang diko ape amanang vanrang tema 2015 wa earthquake diko reconstruction program khonma Nepal nang Rukngit Wanni health facilities tiko Chiwanni cultural heritage project sopika arpe Nepali

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, ये आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 MHz से। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम की महफिल, शाम की महफिल जहां हर शाम बनती है यादगार, हर गीत सुनाता है एक कहानी और हर बात दिल तक पहुंच जाती है।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन दिल उनसे गहरा ताल्लुक महसूस करता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे दाखिल होते हैं जैसे बरसों से उन्हें जानते हों। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून, एक खास सा एहसास मिलता है। कभी-कभी लगता है जैसे ये मुलाकात आज की नहीं, किसी पुराने अफसाने का हिस्सा हो। इसी जज्बात को और बेहद खूबसूरती से बयां करता है अगला नगमा, एक ऐसा गीत जो मोहब्बत, कुर्बत और दिलों के उस अनदेखे रिश्ते की बात करता है जिसे अल्फाज में बयां नहीं करना मुश्किल है। पेश है फिल्म एजेंट विनोद का बेहद फेमस गीत राबता। कहता है ना, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है। सुनिए और महसूस कीजिए।

दोस्तों, इश्क एक ऐसा एहसास है जो जब दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है तो जिंदगी का हर रंग कुछ और ही खूबसूरत लगने लगता है। लेकिन मोहब्बत की राह हमेशा आसान नहीं हो, ऐसा भी कहाँ होता है। कभी दिल सवाल करता है, कभी खुद से लड़ता है, और कभी किसी अनजाने खौफ की वजह से अपने जज्बात छुपा लेता है। मगर जब दिल सच्ची मोहब्बत की आवाज सुन ले तो फिर उसे रोकना मुमकिन नहीं होता। दोस्तों, अगला नगमा भी कुछ इसी पैगाम को लेकर आता है। ये गीत हमें बताता है कि अगर दिल की किसी की तरफ खींचने लगे, अगर किसी की मौजूदगी आपकी दुनिया को रोशन करने लगे, तो उस एहसास को पहचानिए, उसे जीना चाहिए। पेश है फिल्म कभी अलविदा ना कहना का बेहद मशहूर और दिलनशी नगमा मितवा।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम की महफिल, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्पेशल हिंदी फिल्मी गीतों का।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्पेशल हिंदी फिल्मी गीतों का। ये आकाशवाणी ईटानगर का रून FM 103.1 MHz है। दोस्तों अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे आदि श्रोताओं का समाचार।

जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार, ये आकाशवाणी ईटानगर करुण FM 103.1 MHz से। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार। आज के कलाकार में आज हम बात करेंगे मशहूर गायक मोहम्मद रफी के बारे में। दोस्तों, मोहम्मद रफी आज लीजेंडरी ना होते अगर 1933 में लाहौर की नाई की दुकान में पंडित जीवन लाल की नजर 9 साल के नाई फिक्को यानी के मोहम्मद रफी पर ना पड़ती। दोस्तों, मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों में परिवार में रफी दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सबसे ज्यादा प्यार से फिक्को बुलाया जाता था। रफी एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे जहां नाच गाने पर पाबंदी आयद थी, लेकिन रफी अलग थे। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फकीर को देखकर रफी ऐसे प्रभावित हुए कि रोजाना उसे सुनने का इंतजार करते थे। उस फकीर की नकल उतारते हुए रफी साहब खुद भी रियाज किया करते थे। 9 साल की उम्र में रफी का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफी को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उन्होंने पिता ने बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 9 साल के रफी नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर अब नाई बन चुके थे। 1933 की बात है जब पंडित जीवन लाल बाल कटवाने पहुंचे। रफी यहां काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज में एक जादू था जिसने जीवन लाल को प्रभावित किया। जीवन लाल ने रफी को ऑडिशन के लिए बुलाया जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवन लाल ने उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफी गायकी में माहिर होते चले गए। 1937 में रफी ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पे। दोस्तों, आज के कलाकार में हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफी के बारे में। साल 1937 वो एग्जीबिशन में उनका परफॉर्मेंस और ये मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली ना होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदल लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में KL सहगल भी थे, जिन्होंने कहा था ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफी फिल्मों में आए। पहला गाना रहा गल बलोच फिल्म का, परदेसी सुनिए ओ हिरिए। लगातार गाने गाते हुए रफी खूब नाम कमा रहे थे। एक्टर और प्रोड्यूसर नसीर ने मोहम्मद रफी को 100 रुपए और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया। यहां उन्होंने फिल्म पहले आप, जो 1944 में रिलीज हुई थी, का गाना हिंदुस्तान के अहम रिकॉर्ड किया। नौशाद ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया था, देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वालों के जूते पहनाए गए थे। जूते की आवाज से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफी के पैरों में खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर चमक थी। ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। अनमोल गुड़िया, शहीद, दीदार, कोहिनूर जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाने गाते हुए रफी साहब स्टार बन गए। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एसडी बर्मन, ओपी नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके रफी दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शमी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज बन गए थे। 60s के दशक में रफी साहब की टक्कर का कोई सिंगर ना था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास दो दिग्गज सिंगर थे। दोस्तों, 1938 में मोहम्मद रफी की शादी बशीरा बीबी से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफी के सास ससुर की मौत हो गई तो उनके पत्नी बशीरा ने भारत में रहने से साफ मना कर दिया और लाहौर लौट आई। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पे। दोस्तों, आज के कलाकार में हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफी के बारे में। जब मोहम्मद रफी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाना ना गाने की सलाह दी। मोहम्मद रफी ने भी बात मानकर गाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा गाना शुरू किया। मोहम्मद रफी के छोटे बेटे शाहिद की पत्नी फिरदौस ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहा था कि उनसे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि मोहम्मद रफी के कई फैंस ऐसे हैं जो उनकी कब्र पर आते हैं और मिट्टी उठा ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कब्र की मिट्टी तक खा लेते हैं। मोहम्मद रफी साहब लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे। उन्होंने अमरीकी इम्पोर्टेड कार इम्पाला खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइव वाले ये कार भारत के गिने चुने लोगों के पास ही थी। रफी साहब का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पाता। जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा, इस चिंता में रफी साहब ने उसे एक टैक्सी खरीद कर दी। ये टैक्सी उस जमाने में 70,000 की थी। रफी साहब की उस समय की दरियादिली का नतीजा यह निकला कि सुल्तान के पास आज 12 टैक्सी हैं। रफी साहब की मौत के बाद एक फकीर उनके घर तक पहुंचा और रफी साहब से मिलने की जिद करने लगा। जब परिवार वालों ने फकीर को बैठाकर पूछा तो उसने बताया कि उसका घर चलाने के लिए रफी साहब हर महीना कश्मीर खर्च भेजते थे, लेकिन कुछ महीने से खर्च आना बंद हो गया है। रफी साहब के सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रफी साहब बिना किसी को बताए कई लोगों का घर चलाया करते थे। बायोग्राफी नौशाद नामा में रफी साहब के जज्बे का एक किस्सा लिखा गया है। बैजू बावरा फिल्म के गाने ओ दुनिया के रखवाले में रफी को हाई स्केल में रिकॉर्डिंग करनी थी। इसके लिए रफी साहब ने कई दिनों तक लगातार घंटों रियाज किया। जब गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग हुई तो रफी साहब के गले से खून रिस रहा था। इस गाने के बाद कई महीने तक रफी साहब ने कोई गाना नहीं गाया। बताया जाता है कि एक कैदी ने फांसी की सजा के दौरान यह गाना सुनने की आखिरी इच्छा जाहिर की थी। जेलर ने जेल में ही रिकॉर्डर पर यह गाना बजाया और उसे फांसी दी। दोस्तों, 1961 की फिल्म माया के गाने तस्वीर तेरी दिल की में की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में लता और रफी साहब की गायकों की रॉयल्टी पर ऐसी बहस छिड़ी कि दोनों ने साथ काम ना करने का फैसला लिया। लता ने इंडस्ट्री में सभी सिंगर्स की आवाज उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की थी। सभी गायकों ने मीटिंग रखी, लेकिन रफी साहब लता और रॉयल्टी मांग रहे सभी सिंगर्स की सोच के खिलाफ थे। रफी साहब ने लता से कहा कि अब उनके साथ गाना नहीं गाएंगे। इंडस्ट्री में नई आई गुस्से की तेज लता ने जवाब में कहा, आप क्या मेरे साथ गाना नहीं गाएंगे, मैं खुद आपके साथ कभी गाना नहीं गाऊंगी। दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में गाना नहीं गाया, ना ही कोई मंच तक एक साथ साझा की। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थिफ के गाने दिल पुकारे आरे आरे को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने अपनी सुरीली आवाज दी थी। इस गाने को मोहम्मद रफी और लता जी के 4 साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट देना गलत नहीं होगा। 1967 में संगीतकार जय किशन के कहने पर रफी साहब ने लता से चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। 1967 में हार्डी बर्मन के एक प्रोग्राम में दोनों ने इसी साल रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थिफ का ये गाना गाकर और झगड़ा को खत्म किया था। दोस्तों, रफी साहब एक शो के लिए ब्रिटेन के कोवेंट्री पहुंचे थे। यहां खाना रफी साहब की पसंद का नहीं था, दोनों ने मिजाज खराब हो गया। वहीं मिलने पहुंचे

और बहू से रफी साहब ने पूछा कि यहां लंदन कितना दूर है। जवाब मिला, सिर्फ 3 घंटे। रफी साहब ने तुरंत बेटी यास्मीन को कॉल किया और कहा, क्या तुम घंटे भर में दाल चावल और चटनी पका सकती हो? बात बनी तो रफी साहब तुरंत गाड़ी से लंदन रवाना हो गए। भारतीय खाना खाया और दोबारा शाम 7 बजे तक ब्रिटेन लौट आए। लोगों ने उनके अचानक होने का कारण जाना तो हर कोई हैरान था। 31 जुलाई 1980 को रात करीब 10:25 में मोहम्मद रफी ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। अगली सुबह इन्हें जुहू के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनके अंतिम दर्शन में करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। भारत सरकार ने रफी के निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया।

0: जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आज का कलाकार, जहां हम बात कर रहे थे मोहम्मद रफी के बारे में। ये आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। दोस्तों, अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का समाचार।
1: आसमान से बातें कर
2: आकाशवाणी इतान पुकुमा हिल पोल गा आलो लोक ननफवा उरुम गा कनबाजी रेम तारमेलम अलमेन सुरुंग निशि आगम आर मोलंजी ग्रेम तानग दत्ता चोब सुरुंग शि पयम तापा चोरे जजरशि नरम आखम रिपु बाबला चिगो दोगो ग दोम अर्पु कोर पाकोर नामते लो अलब पुलेन पाले ग क लो भारत हरि मि मि मि गर कुने सो मोक मेगन गद ह दोम अर्ग फले लो अलब पुबेक पाबेक ला पुलेन चालिन गला माद कुने खमला सिलो रिबोल क डिफेंस मिनिस्टर धर्म राजनाथ सिंह ये जापा पुकुने मा ओके फाइनेंशियल ईयर 2025-26 लो जीडीपी ग्रोथ रेट हम कन पॉइंट कन परसेंट दब रजिस्टर मनम आगम हम धर्म सिंह जापाला रेड कुला सो इन कुन इनी निरि गोला निनी नन आरा लो भारत दोम अर हम आद ह पुबेन चाबेन सिदु कुब रिलेन दागलन गप कुम हमला धर्म सिंह जापा ताप कुम हम ओके प्रो मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लीडरशिप आरा लोक भारत दोम अर्ग पहले लो अलव शीलन गिरन गग दुखन में खम नरेंद्र सिंह या सोशल मीडिया ला पोस्ट मुल्क का ग्रीक ला जपाप कुन में खम ला मेम पाता तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट का गवर्नर केटी फरनाइक ये खेल गए है आलो शिलोंग लो आसाम राइफल्स का डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लकेरा ने कल तारीख ग्रीक लासो की मुख ने गुदा अर्दुर मिसे कोकोलो अल्ब हेंत्रो का तोर मिसे का ग्रीक ला निव निमाग लगा बरी वो मेंगो हम अल्ब रिकर्मिंग कर मिसे का ग्रीक ला रेग दाग तुका हम ला जामिशिप कुंभ हम तो ओका चतर में तोर ला रेग दाग ताक लिक लो मेगो रिति ग्रीक मिसे कुनाम अगम आम लिक हम गवर्नर ये जापा जिताला रेता दुकु ला सो त्रुपसी गुद हम आलब हेंग काग ला रेग दाग मद कुब रिद कुने ओक गुदा अर्ग शुलु हम आलब रग रखपा मेशी मुग्रिक ला मोकम चतर मेंटर जिदकु बला गुदा अर दुर मेशी कोक लो रेगोदा को हम चप चप आलब रेग दाग दुकु रिद कुने हम ला गवर्नर ये जपता पुकुने बहम तो ओक म्यांमार मोक ने गुदा अर दुर मेशी कोकलो युमसुम आलब सेम गुम दुकु आसाम राय पोर्स ग आलब सेग मेंग कुनाम सिम एच आलब हिल कालिक दुकुने हम ला आसाम राय पोर्स ग दु ने जप्त जंगम आगम हम गवर्नर ये जप्ता पुकुने बहम ला मेम पा था तो ओक लोकल नि ग दु ग आरालो आलब सेबम ग दुकुब सिविक एक्शन में नाम हम अलब तुलु गग्रिक लासोक अदो अदो गुदा लो रिगो मेंगो हम अलब रिजिमेंट तानम लेगाब गवर्नर ये आसाम राय पोर्शने जप्त जंगम आगम हम गुमनी नाब जप्ता पुकुन में हम में पाथा तो अरुणाचल प्रदेश बीजेपी के एक पेर मा के नाम में नाम अनग इमिन ब सिन अनगो लुतु जिदकुब प्रोग्राम को चिंपू के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लो रिकोकलो अरुणाचल प्रदेश स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने फेमा कांतुला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नर्म छोना मेन ओक की नी

0: जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम निशी श्रोताओं का समाचार और प्रस्तुत है कार्यक्रम वुमेन एंड फैमिली वेलफेयर का।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ज। मैं हूँ आपके रेडियो साथी गैर अतर। स्वागत करती हूँ आप सभी श्रोताओं का महिला जगत कार्यक्रम में। श्रोता, आज के इस अंक में हमारे साथ स्टूडियो में है विमेन एंटरप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी मिसालों में से एक तुमी रिबा, ओनर एंड फाउंडर ऑफ ओबिनियम्स कैफे एंड बेकरी अरुणाचल प्रदेश। तो तुमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
1: तो जैसे कि आप जानती है कि ये जो कार्यक्रम है ये महिलाओं के लिए है, खास करके जो हमारी महिला सहेलियां है, जो यूथ है, उन लोगों पर आधारित है। तो इस कार्यक्रम में जाहिर सी बात है हम ओवन यम्स के जो स्पेशलिटी है, उसके बाद जो फ्लेवर्स एंड रेसिपीज के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी जो जर्नी है एक बेकर के तौर पे, उसको अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आप अभी बहुत ज्यादा महिलाओं के और यूथ के इंस्पिरेशन बनी हुई है। तो हम चाहेंगे आपकी जो कहानी है उसको हमारे श्रोताओं के साथ, जो जर्नी है उसको शेयर करें और उन्हें और इंस्पायर करें।
2: तो मेरा जो जर्नी है ये स्टार्ट हुआ अराउंड 2017 के आसपास
1: जी।
2: तो एक्चुअली मैंने प्रॉपर कुछ कोर्स नहीं किया ये बेकरी के फील्ड में। मैंने एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन डिजाइनिंग पे किया है
1: जी।
2: तो फैशन डिजाइनिंग किया था, बट देन लाइक बहुत कुछ हुआ एंड देन मैं वापस आ गई। उसके बाद मुझे खाने का बहुत शौक है, तो आई एम लाइक अ फूडी। तो क्या हुआ कि लाइक घर पे आई यूज टू बेक अ लॉट, तो बेक बहुत करती थी एंड देन फ्रेंड्स एंड फैमिली को यू ऐसे ही रेसिपी टेस्ट करा, फिर किसी को खिलाया, फीडबैक लिया कैसा है क्या है। तो ये सब करते करते लाइक एक दो ऑर्डर्स आना शुरू हो गए।
1: अच्छा,
2: फॉर बर्थडे केक्स।
1: अच्छा, घर पे बेक।
2: घर पे हाँ। तो इनिशियली कोई स्टोर नहीं था।
1: हाँ।
2: तो एक दो ऐसे लाइक फ्रेंड्स का किसी का बर्थडे हो गया तो उन्होंने बोला कि चलो एक केक बना दो, तो इट वॉज अ हॉबी। तो आई वाज लाइक हैप्पी, ठीक है, खाने वाला कोई मिल रहा है, इट्स गुड ना। तो बनाया, फिर ऐसे ही चलते चलते लाइक धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग थोड़ा थोड़ा ज्यादा ऑर्डर्स। तो मुझे लगा कि मे बी दिस कैन बी अ करियर, मे बी। तब स्ट्राइक हुआ कि मे बी हाँ ये कर सकते, बट इतना श्योर नहीं था कि हाँ ये करना ही है। दिमाग में ऐसा था कि मे बी हाँ इसको एक ट्राई दे सकते हैं। ऊपर से इंटरेस्ट था, हॉबी था, पैशन था, तो खाने का शौक भी था। तो वो ऑर्डर्स लेते गया एंड देन उसके बाद एक दो साल लाइक एक डेढ़ साल में भी ना, तो होम बेस्ड ही था। हम लोग बस केक्स का ऑर्डर लेते थे, बर्थडे केक्स। तो तब समय क्या था कि कैफे कल्चर इतना नहीं था यहाँ पे, जैसे अब भी है वैसा नहीं था। तो उतना ध्यान में भी नहीं आया कि हाँ मे भी कैफे भी कर सकते हैं। तो वो जर्नी जो था एक डेढ़ साल का, उसके बाद जब एक पॉइंट आया कि हाँ यही करना है, जब आपको पता चलता है कि हाँ यही करना है, तो मतलब आइडियाज और आने लगा कि क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं मे बी इसके आसपास, केक्स के आसपास। तो सोचा कि चलो एक कैफे करते हैं, बट देन उसके लिए फिर क्या हो गया कि यू नीड लाइक आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए फिर, तो वो एक इश्यू आ जाता है। अभी आपका ये जो है स्टार्टअप्स में यूजुअली क्या होता है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली या आपके पास लाइक वो अमाउंट नहीं है टू स्टार्टअप, तो वो एक थोड़ा मुश्किल आता है। तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ फिर, बट समहाउ आई मैनेज्ड एंड देन इनमें इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत थोड़ा सा हेल्प रहा। लाइक डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में एक स्कीम था, चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना।
1: अच्छा।
2: तो उसमें अप्लाई किया तो उसमें एक ग्रांट मिला, तो विच हेल्प अ लॉट टू स्टार्ट माय फर्स्ट स्टोर। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में है, अभी भी चालू है मेरे ख्याल से ये योजना।
1: अच्छा।
2: तो इफ कोई नया एंटरप्रेन्योर जो जिनका आइडिया बहुत अच्छा है एंड देन फुल प्रूफ है एंड देन दे आर विलिंग टू वर्क, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि आपको बहुत मेहनत करना
1: है। वो तो है,
2: इट्स लाइक इजी नहीं है।
1: हाँ, हाँ.
2: जैसे लोग सोचते हैं कि ये तो बस केक बना रहे
1: हाँ.
2: या तो ये जस्ट गारमेंट बना रहे, मतलब इजी नहीं है। बहुत सारा चीजें चलता है जो कि आपको ओवरलुक करना पड़ेगा, देन बहुत मेहनत करना पड़ेगा कि इसको कैसे आगे लेके जाए, एंड देन विजन होना पड़ेगा उसके लिए आपको।
1: वही
2: तो वो जरूरी है
1: जी। आपने अभी खुद बताया कि आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, और जहां तक हमने आपके बारे में सुना है आप उसमें गारमेंट बिजनेस में भी थे, तो क्या अभी दोनों साथ साथ चल रही है या आप बेकरी है उसी पे है, ओवेनियम्स पे ही है?
2: नहीं, अभी तो 100% बेकिंग में है अभी।
1: अच्छा, आपने जो आपका गारमेंट्स का जो बिजनेस है उसको ड्रॉप कर दिया?
2: ड्रॉप मतलब ऑन होल्ड रखा।
1: हाँ,
2: बट देन मे बी अगर फ्यूचर में लाइक टाइम, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि आपको बहुत टाइम देना होता है, तो वो आप दो तीन एक साथ, हाँ कोई लोग होते हैं जो कर पाते हैं, बट मैंने सोचा कि एक को जो अभी स्टार्ट किया है उसको अच्छे से टाइम देके थोड़ा आगे लेके जाते हैं, उसके बाद मे बी अगर कुछ और होता है तो।
1: हाँ, इसमें आपका ये एक आपका हॉबी भी रहा है तो। और लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं है कि आपको इसमें सही नहीं लगा, ऐसे तो कुछ नहीं है। जो लोग फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं या फिर उस चीज को फॉलो करना चाहते हैं, उसमें कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं।
2: हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि वो करियर नहीं है, ऐसा नहीं। इट वॉज जस्ट कि एक हॉबी शिफ्ट हो गया, एक पैशन शिफ्ट हो गया, एक सर्टन पॉइंट में वो मेरा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। इट्स लाइक कि इसमें मेरा ज्यादा मन है।
1: हाँ,
2: तो उसके मुताबिक मैंने अपना थोड़ा सा जो करियर पाथ है उसको चेंज किया।
1: हाँ, जब इंटरेस्ट

0: आपका होता है जब आप मतलब पैशन के साथ करता है तो वो थोड़ा आसान लगता है और मतलब इजी हो जाता है। तो जैसे जो बिजनेस है आपका या फिर कहे कि ओवन यम्स का जो सक्सेस है उसको हम उसके आउटलेट से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया 2017 में आपने होम बेस्ड शुरू किया था, तो अभी तो 23 है, वो कम समय में, क्योंकि बीच में कोविड भी रहा तो उसमें भी काफी परेशानियां होगी। कोविड में तो बहुत सारी चीजों का बेचना वो तो मुमकिन नहीं था, तो इतने कम समय में देखा जाए तो आपका तो कुछ साल का ही बिजनेस रहा है, अगर हम कोविड को अगर बीच में से अगर हटा दे तो, कोविड वाला सीजन को। ऐसे में आपका 3 आउटलेट्स होना मतलब बहुत बड़ी सफलता है। तो और इसके बाद जैसे अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको ओवन यम्स को ग्रांट भी मिला है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सक्सेस है ओवन यम्स के लिए, तो बहुत बहुत बधाई उसके लिए। तो इसमें मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ओवन यम्स की 3 आउटलेट्स है उसमें कितने लोगों को आप एम्प्लॉय कर पाते हैं, कितने लोग वहां पे काम करते हैं?
1: ओके, अभी अगर मेरा 3 आउटलेट्स है हमारा, एंड देन हमारा एक सेंट्रल किचन है,
0: अच्छा,
1: तो उसको सबको मिला के इन अराउंड 16 to 17 लोग हैं।
0: अच्छा, तो वो लोग भी एक ट्रेन बेकर है?
1: नहीं, यहाँ पे क्या है कि ट्रेन बेकर मिलना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा। आपको बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं जो कि ऑलरेडी जिनने काम किया हुआ है, तो वो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। हाँ। तो मैंने क्या किया कि बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट लोग बुलाए, एम्प्लॉयज हायर किए, देन रेसिपी दे दिया, बनाओ कर दिया, ऐसा हाँ, नहीं है। तो आई यूज टू बेक ऑल्सो, इवन आई बेक अभी भी। तो मैंने क्या किया कि आई लाइक यहाँ पे 2-3 लोग हायर किए यहाँ लोकली, मोस्टली वुमेन, लाइक आप बोल सकते हैं कि 90% वुमेन एम्प्लॉय है। तो 2-3 मैंने लोग हायर किए, उनको ट्रेनिंग दिया पहले,
0: अच्छा,
1: कि ये रेसिपी से ये बनाने हैं। उसके बाद हमने लाइक मैंने जो क्यूरेट किया, मे बी मेरे टेस्ट के हिसाब से जो चीजें हैं मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा है, ये लाइक मार्केट में पसंद किया जा सकता है, तो उस हिसाब से हमने मेन्यू रेडी किया, एंड देन स्टाफ को ट्रेन किया, खुद ही किया मैंने सब कुछ।
0: अच्छा,
1: तो उसके बाद लाइक वो चेन बनाना पड़ता है फिर ना, तो एक 4 स्टाफ है, मे बी उसके नीचे और 2 लगा दो, फिर उनको सीखने दो, ऐसे करके धीरे धीरे वो स्टाफ ये बनने लगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्रोफेशनल्स है, ट्रेन प्रोफेशनल्स ज्यादा नहीं मिलते
0: अरुणाचल
1: में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए,
0: वही वही,
1: तो स्किल ट्रेनिंग बहुत कम है लोगों के पास, जो स्किल ट्रेनिंग है ना।
0: हाँ।
1: यहाँ पे क्या होता है कि लोग पढ़ने में लगे रहते हैं, विच इज नॉट बैड, जो गलत नहीं है।
0: हाँ।
1: और सबका अपना अपना एक
0: एम होता है
1: करियर को लेके अपना चॉइसेस अलग अलग होता है, बट देन कोई कोई अगर इसीलिए एक जिनको इंटरेस्ट है कुछ फील्ड में, नॉट जस्ट बेकरी या कोई अदर फील्ड जो भी हो, एक स्किल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास वो स्किल है तो बिना सर्टिफिकेट के भी आपका स्किल को देख के आपको कोई हायर कर लेगा।
0: हाँ, तो उसमें भी आप कमाई है वो कर सकते।
1: वो कर सकते हैं, वो तो स्किल ट्रेनिंग होना जरूरी है।
0: ये जो ट्रेनिंग है वो बेकिंग का, क्या ओवन यम्स देते हैं लोगों को?
1: अभी फिलहाल तो नहीं है,
0: अच्छा,
1: स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि ये भी ऐसा है कि मेरा जो मन है, अगर इफ आई स्टार्ट लाइक ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग देना चालू करूं अगर, तो प्रॉपर एक प्लेस होना है, इक्विपमेंट्स होना है, क्योंकि आप ऐसे थोड़ा सा सिखा दो एंड छोड़ दो वो भी नहीं होता ना, तो अच्छे से एटलीस्ट एक प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल होना पड़ेगा, तो वो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक था, एंड देन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, तो हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, बट देन इन फ्यूचर हम लोग प्लान तो कर रहे हैं।
0: उसके लिए किचन भी थोड़ा अलग, आप जहाँ बैक करते हैं उस पर तो शायद
1: नहीं हो सकता है। अच्छा। तो अलग से एक स्पेस होना पड़ेगा, एंड देन प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ आपको ट्रेनिंग के लिए, क्लासेस के लिए चाहिए होगा, तो और प्लस टाइम भी बहुत देना पड़ेगा।
0: वही वही, तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये जैसे मैं अपने श्रोताओं को भी बता दूं कि जिस अभी आपने सुना कि तुम्ही जी जो है कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, खुद से अपने पसंद और हॉबी को फॉलो करते हुए उन्होंने इतना सीखा है और इतना किया है कि वो अभी बाकी लोगों को भी रख सकते हैं, काम दिला सकते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक अभी के जमाने में एक बहुत बड़ा अच्छा आइडिया है, ये एक अच्छा करियर ऑप्शन भी है। और जैसे अभी आपने बोला कि हर कोई अभी सरकारी नौकरी के लिए परेशान रहते हैं, हर किसी को तो इस जमाने में ना सरकारी नौकरी मिलने से रहा,
1: हाँ वो तो पॉसिबल नहीं है।
0: और नहीं मिलने के कारण फ्रस्ट्रेट होके अपना लाइफ, मतलब अपना जो टाइम बर्बाद करना, वो भी तो किसी हाँ। भी तरह से सही नहीं है। तो जैसे जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप को ऑप्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, और हो सकता है कोई चाहते भी है लेकिन जैसे शुरू करने के लिए जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आइडियाज होने से भी कुछ लोगों का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, ऐसे भी होंगे, या छोटा बड़ा कोई भी स्टार्टअप जो करना चाहता है उनको एंटरप्रेन्योरशिप का जो कुछ आइडियाज है वो आपके हिसाब से आप कुछ हमारे श्रोताओं को शेयर कर दे तो बेहतर होगा।
1: अभी तो स्टार्टअप के लिए आई थिंक स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अगर थोड़ा सर्च करेंगे तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। एंड देन आजकल बहुत सारे ग्रांट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने टूरिज्म का बताया अभी आपको। उसके बाद अभी यहाँ पे एक अरुणाचल प्रदेश इनोवेटिव इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क भी है, ये है आपका इधर किंगअप स्कूल के आसपास में है।
0: अच्छा, नीति विहार।
1: तो इनका भी एक प्रोग्राम चलता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसमें भी इन लोग ग्रांट देते हैं। एट द सेम टाइम इन लोग आपको मेंटोरशिप भी देते हैं।
0: अच्छा।
1: तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अवेल कर सकते हैं यहाँ पे आजकल के जमाने में, क्योंकि पहले इतना ये सब नहीं था। आजकल सरकार भी बहुत एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं सरकार, तो उसमें क्या है कि कुछ ग्रांट्स वगैरह काफी सारा अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। एंड देन उसके लिए आपको अपना जो आइडिया है, आइडिया आपका बहुत सही होना पड़ेगा कि आपको वो ग्रांट मिले। तो आइडिएशन मेरे ख्याल से उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एंड देन आपका स्किल, कि ऐसा नहीं हो कि जस्ट आइडिया है बट वो बनेगा कैसे, वो आपको देखना पड़ेगा वो चीज। तो उसमें आपको बहुत सारा चीजें, स्किल बेस्ड होगा, टेक बेस्ड होगा, तो उसमें कैसे आप आइडिया को फॉरवर्ड लेके जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक आइडिया है यहीं पे सब सीमित है, आगे उसको कैसे लेके जाना है वो सोचना पड़ेगा। उसके बाद उस हिसाब से आप, अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, तो आपको ग्रांट्स भी अवेलेबल है आजकल काफी सारा।
0: थोड़ा अवेयरनेस भी होना पड़ेगा, होना थोड़ा यहाँ वहाँ पता करना पड़ेगा। और जहां तक हम जैसे लोग समझते हैं जो स्किल से, उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप में आपकी जो डेडिकेशन और जो मेहनत है वो भी मतलब बहुत जरूरी होगी,
1: बहुत ज्यादा, वो तो बहुत ज्यादा।
0: क्योंकि जो सरकारी नौकरी करते हैं वो अगर 5 दिन 10 दिन भी ऑफिस नहीं जाए तो भी उनको सैलरी तो उतना ही अमाउंट आना ही है। लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आप लोग जो काम करते हैं उसमें तो जहाँ पे मेहनत गई वहाँ पैसे भी गए, उसके बाद क्वालिटी गए वहाँ भी आपके मतलब, और करियर भी विद इन कुछ समय में ही खत्म होने का भी चांसेस रहता है,
1: वो बहुत ज्यादा है। तो उसमें आपको मतलब परसिस्टेंट होना पड़ेगा। एंड देन इसमें क्या है कि मैंने जितना देखा है, आप एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप इंटरेस्टेड है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। लाइक इनिशियली मैंने जब स्टार्ट किया था, सुबह 4 बजे तक आई यूज्ड टू बेक अकेले।
0: अच्छा।
1: रात को सुबह 4 बजे तक, क्योंकि मेरा प्रोफेशनली आई वॉज नॉट ट्रेन्ड, तो बहुत सारा चीजें पता नहीं था कि कैसे होना है। तो टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाते हैं, तो आपको बहुत सारा चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मे बी योर स्लीप,
0: वो तो होगा ही,
1: तो उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा फिर आपको। जो लोग सोचते हैं कि इजीली हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको।
0: जैसे कि आपका जो कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, या फिर सस्टेनेबिलिटी जो है। तो इस बीच अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जिस पर कार्यक्रम चल रहा है महिला जगत। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस तुमी रिबा, ऑनर एंड फाउंडर ऑफ ओबेनियम्स कैफे एंड बेकरी ईटानगर, और हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
2: तुम्हें जी, अगर हम ओविन यम्स की बात करें, उसकी जर्नी की बात करें, उसकी सफलता की बात करें, तो ओविन यम्स को आप कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे

0: को आगे बढ़ने के लिए आप मेंटेन रखते हैं? क्या स्पेशलिटी है ओबेनियम्स की?
1: तो हमारा बेसिक जो बिजनेस का आइडिया है, हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग का जो बेक्ड गुडीज है,
0: हाँ,
1: जो हम बेक करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि इट्स फ्रेश, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते हैं.
0: अच्छा.
1: इसके लिए लाइक एक दो दिन आप चालू करोगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ, दिन में इतना क्वांटिटी बनना सही है. तो हम लोग उस हिसाब से कम बनाते हैं कि एवरी डे हम लोग फ्रेश चीजें बनाएं. क्योंकि क्या यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, आप ट्राई करोगे तो थोड़ा पुराना मिलने से आपको भी अच्छा नहीं लगता ना, और हमको भी सर्व करना वो पसंद नहीं है. तो हम लोग क्या ट्राई करते कि हमारा जो बेक्ड गुडीज है वो फ्रेश रहे और स्वीटनेस को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ के लोग इतना ज्यादा स्वीट नहीं खाते, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं.
0: अच्छा.
1: तो हम ज्यादा ध्यान उसी पे रहता है हमारा.
0: और अगर हम क्वालिटी डेडिकेशन की बात करें तो दोनों ही बराबर है या मतलब कैसे, जिस किस पर ज्यादा हमें काम करना चाहिए?
1: मेरे ख्याल से तो बराबर है.
0: और जो लोग, जो लड़कियां हैं, जो जिसका ग्रेजुएशन हो गया, जिन्होंने अपना जो भी कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया, अभी जॉब के लिए यहाँ ईटानगर बैठे हैं, या फिर जो अपने गांव में भी बैठे हो, और या फिर इवन जो होम मेकर्स है, जो घर पर है, उन लोग भी अगर मतलब ये बेकिंग दुनिया में, मतलब इसमें अगर अपना कुछ थोड़ा बहुत करना चाहे, जैसे आपने भी घर से ही शुरू किया, तो घर बैठे ही थोड़ा सा कम खर्चा में थोड़ा बहुत करना चाहे तो कैसे शुरू कर सकते हैं? क्या इसमें बेकिंग में भी ऐसे कुछ है कि आप घर बैठे बैठे थोड़ा सा पैसा कमाना चाहे तो क्या वो भी कर सकते
1: हैं? हाँ, कर सकते हैं डेफिनेटली. ये आप एक पार्ट टाइम हॉबी की टाइप भी कर सकते हैं, बट उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट हल्का सा करना पड़ेगा. क्योंकि बेकिंग ऐसा है कि आप थोड़ा सा अभी बेक कर लिया, थोड़ा बाद में बेक कर लिया, वो नहीं होता है. तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा देखना पड़ेगा. हाँ, बट होम बेस्ड कर सकते हैं, दैट्स इजी. थोड़ा सा वही टाइम मैनेजमेंट का इश्यू रहता है.
0: वो अगर आप
1: समय लेते हैं, जैसे लोग सोचते हैं कि केक बहुत जल्दी बन जाता है, ऐसा नहीं. एंटायर प्रोसेस है ये एक ना, एंड देन टाइम काफी लेता है.
0: और अगर उसको आप एक बिजनेस पर्पस के लिए बेचने के लिए बना रहा है तो परफेक्शन भी जरूरी है ना. वो भी सही बात है. तो जैसे कि अभी अरुणाचल प्रदेश में बहुत ऐसे अलग अलग जो चीजें हैं उसमें, चूंकि ये महिला जगत कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए है, तो जो अनकन्वेंशनल जॉब है उस पे बहुत सारे लड़कों को हम देख सकते हैं. और अभी तक का जो हमने जो देखा है, इवन सोशल मीडिया में भी हम देखते हैं, तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन, मतलब महिला उसमें बहुत कम है. तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: कम तो है, बट देन अभी लोग बहुत सारे लड़कियां आ रहे हैं, लाइक फीमेल एंटरप्रेन्योर्स अप एंड राइजिंग है. एंड इसमें मेरे ख्याल से फैमिली का बहुत बड़ा एक रोल रहता है. बिकॉज मेरा भी अगर मैं जर्नी देखूं, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता, नॉट फाइनेंशियली बट आपका मोरली हो गया, एंड देन टाइम भी देखा जाए तो मेरा इतना, मैं क्यों इतना टाइम दे पा रही हूँ, बिकॉज फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी चीजों में
0: चीजों को वो मैनेज,
1: हाँ, वो मैनेज कर दे रहे, सो दैट मैं उधर पहुंच पाऊँ, एंड देन टाइम उतना टाइम दे पाऊँ. तो मेरे ख्याल से फैमिली सपोर्ट एक रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट रिगार्डलेस, आप अगर आपका पैशन है, एंड देन इफ यूर आपको उस तरफ काम करने का, एफर्ट देने का, अगर आपको आप कर सक रहे हैं तो आप आगे जा सकते हैं. इट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप में इट्स ऑल अबाउट आइडिया, देन आपका कंसिस्टेंसी है, देन आपका एफर्ट्स, वो बहुत मैटर करता है ये सब चीजें.
0: आजकल तो वैसे भी कुछ महिला या पुरुष ऐसे कुछ तो धीरे धीरे ये गैप भी कम होते जा रहा है,
1: कम हो रहा है, बट इट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है.
0: अच्छी बात है. तो अगर वैसे अभी हमारे समय होने को है, तो जाने से पहले जो जितने ओबेनियम्स का, जो जैसे हमने पहले भी बोला कि ओबेनियम्स का 3 आउटलेट्स है, हम जानते हैं नाहरलगन में है, ईटानगर में, फिर भी लोकेशन आप हमारे श्रोताओं को बता दे, जो अपने जो आपके स्टोर में जाके, जो कैफे में जाके लेना चाहे तो.
1: ओके, हमारा पहला स्टोर जो स्टार्ट हुआ था वो 0 पॉइंट में है, KFC के सामने.
0: अच्छा.
1: एक वो है, देन हमने गंगा में स्टार्ट किया है जो कि आकाशदीप का ओपोजिट में है.
0: ओके.
1: एंड देन उसके बाद अभी दिस ईयर तो हमने एक नाहरलगन पे स्टार्ट किया है, ई सेक्टर.
0: ई सेक्टर जी नाहरलगुन, और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं?
1: ऑनलाइन अभी तक स्टार्ट बीच में हम कर रहे थे थ्रू हंगरी जी, बट अभी कुछ समय के लिए हमने बंद किया है क्योंकि थोड़ा मैनेजमेंट में, जैसे कि 3 स्टोर है तो अभी उससे कैसे मैनेज करना पड़ेगा वो थोड़ा देखना पड़ रहा था, तो हमने अभी के लिए थोड़ा सा बंद किया है. बट देन आप यू टेलर्स वगैरह के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं.
0: अच्छा,
1: पिकअप डिलीवरी कर देते हैं एंड सेल्फ पिकअप तो है ही.
0: हाँ हाँ ठीक है, तो हम तो उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता लोकेशन सुन लिए होंगे, तो जो ओविन यंग्स विजिट करना चाहते हैं वो जरूर जाए और चक्के देखे. तो जैसे मैंने पहले बोला कि इतने कम समय में इतने 3 आउटलेट्स, वो भी कोविड टाइम को स्किप अगर हम करें तो, तो इसका मतलब तो जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा. इसलिए अपने श्रोताओं को भी मैं जरूर यही बोलना चाहूंगी कि एक बार जरूर टेस्ट करके देखें. तो अभी जो हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं उन्हें अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगी, जो खास करके जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है उन लोगों को?
1: मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे स्कोप काफी ज्यादा है क्योंकि बहुत कुछ नहीं है यहाँ पे करने के लिए. लेकिन यहाँ पे अरुणाचल में मैंने क्या देखा है, एक ऐसा होता है कि कोई बेकिंग कर रहा है तो सब लग जाते हैं बेकिंग.
0: हाँ हाँ हाँ.
1: कोई मैक्रम का काम कर रहा है तो सब वही लग जाते करने. तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें करने को, एंड देन अगर आप थोड़ा सा अपना होराइजन बड़ा करें, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा आजकल नेट सबके पास रहता है, थोड़ा सर्च करें बहुत सारी चीजें करने के लिए. जैसे कि अभी एक मैक्रम वर्क भी काफी चल रहा है एंड देन बहुत सारी महिलाएं उसमें काम कर रही है, वो एक हो गया. बहुत सारी चीजें है करने के लिए, तो अगर आप थोड़ा सर्च करें, रिसर्च अपना करें, अपना इंटरेस्ट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. इसमें क्या हो जाता है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि आप फूड बिजनेस में है बट आपको खाने का कोई शौक नहीं, तो आपको पता नहीं रहेगा कि क्या गलत जा रहा है क्या सही जा रहा है. तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है,
0: बनाने के साथ साथ खाने का इंटरेस्ट होना पड़ेगा.
1: तो आपको वो टेस्ट का पता होना पड़ेगा. जैसे कि आप अगर मैक्रम का कर रहे हो तो आपको वो दिखना कैसा चाहिए, कैसे मतलब अपील करे कस्टमर्स को, वो सब चीजें देखना जरूरी होता है. तो मेरे ख्याल से एक इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. तो क्या होता है ना, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है बट लोग सोचते हैं कि हाँ ये बिजनेस अभी चल रहा है या बूम कर रहा है तो आप कूद जाते हो उसमें, तो वो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से. आपको देखना है कि आपका पैशन है कि नहीं, आप उस हिसाब का काम कर पाओगे कि नहीं, वो एक देखना जरूरी है. तो पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको कई बार लोग भूल जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. कि धीरे धीरे, क्योंकि आप ऑब्वियसली 1-2 साल के लिए नहीं कर रहे हो ये चीज, आपका एक करियर पाथ है ये, तो बहुत सालों तक करना पड़ेगा. तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो ऑब्वियसली आप अपना 100% नहीं दोगे उसमें, तो दैट्स वेयर फेलियर होता है मेरे हिसाब से.
0: इंटरेस्ट होना पड़ेगा,
1: इंटरेस्ट तो होना पड़ेगा आपका, एंड मेहनत करने के लिए रेडी रहना.
0: वही, बिना मेहनत का तो कुछ हो नहीं सकता ना. तो हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो जो आपकी बातें हैं उनसे भी उनको बहुत प्रेरणा मिली होगी. और अपने श्रोताओं को मैं तो फिर से बताऊंगी कि तुमीरबा जो है कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ऐसे ही अपना पैशन फॉलो करके आज हम कह सकते हैं कि एक बहुत सक्सेसफुल बेकर बन गए हैं. तो आप भी उनसे प्रेरित होइए और अपना कुछ नया करने की कोशिश कीजिए. जैसे इन्होंने बताया कि एक करते हैं तो सब लोग कूद जाते हैं क्योंकि उसमें कंपटीशन भी ज्यादा रहता है, तो आपको और मतलब दुगनी मेहनत करनी होती है उसमें. और कुछ जब नया करता है तब ज्यादा लोग भी नई चीजों पर ज्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं, और आप अगर मैदान में अकेला है तो बाकी ऑप्शन भी लोगों के लिए नहीं रहते. तो कुछ कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, इंटरनेट का सही उपयोग कीजिए. तो इसी के साथ हम तुमीरबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें वक्त दिया और हमारे जो महिला मित्र है खास करके उनको अपनी जर्नी शेयर किया और जो भी आइडियाज है वो शेयर किया. बहुत बहुत धन्यवाद.
1: धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए.
0: तो श्रोता, हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे और इसी तरह के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 MHz. नमस्कार.

जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वोमेन एंड फैमिली वेलफेयर का। ये आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम अपना गीत।
1: अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम अपना गीत। अपने राज्य के गीतों के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी गैर अत।

अपना गीत कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना इदू भाषा में, हमारा लेजेंडरी सिंगर स्वर्गीय बुद्धि लिंगी की आवाज में। ये गीत एक ड्रिंकर का कन्फेशन था। कहते हैं कि दारू ना पीने की खुद से चाहे जितना भी वादा कर ले, पर ये लत ऐसी है, ये आदत ऐसी है कि पी ही लेता है। तो श्रोता, कन्फेशन से भरा इस गीत के बाद चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे दुनिया की हर माताओं को। प्यारी माताओं, बस आप खुश रहें और लंबे वक्त तक हमारे साथ, आपके अपनों के साथ रहें।

ये गालो गीत था जिसे मिस केम्बकम्के और उनके भाइयों ने मिलकर अपनी माँ के लिए बनाया था। गीत लिखा था गतो ओरी ने, कंपोज किया मीबुन्योदु तारिन ने और आवाज थी मिस पंगम लोम्ब की।

बान्यम पोंगलाहम और पेवो पोंगलाहम की आवाज में आप सुन रहे थे वांचो गीत। हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम है अपना गीत। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं आदि भाषा में आलो लिबांग की आवाज में, जिसमें गायक एक लड़की की घमंड को तोड़ने की कोशिश में कहते हैं कि जवानी भी एक फूल की तरह है, एक बार खिलकर खत्म हो जाती है। खूबसूरत तुम ही नहीं बल्कि दुनिया में कई और है जो तुम्हारी तरह खूबसूरत है।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें हम लेकर आते हैं अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीत हर शुक्रवार से शनिवार रात 8 बजे। जी हाँ, आप ही का अपना चैनल अरुण FM 103.1 MHz पर। तो चलिए, वक्त हो चला है अपना गीत कार्यक्रम के आज के इस अंक के समापन का। जाते जाते छोड़ जाती हूँ आप सभी श्रोताओं के लिए ये निशी गीत बिंग्या तब और तोको यालम की आवाज में। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

0: And with that, we came to the end of today's episode of Western Melodies here on Akashwani Itanagar. I'm your host, Coco.
1: जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज का। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। जिंदगी की राह में कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली तो पड़ जाती हैं, मगर दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती हैं। कुछ चेहरे, कुछ लम्हे, कुछ बातें, कुछ नगमे जो बरसों बाद भी सुनाई दे तो रूह तक को छू जाते हैं। भूले बिसरे उसी एहसास का नाम है जहां हम तलाशते हैं यादों के उन मोतियों को जो कहीं वक्त की तनों में छुप गए हों। दोस्तों, कभी पुरानी डायरी के पन्नों में, कभी किसी तस्वीर की मुस्कुराहट में, और कभी किसी पुराने गीत की धुन में अचानक कोई याद दस्तक दे जाती है और फिर खामोश दिल कह उठता है। कुछ लम्हे उम्र भर के लिए नहीं होते हैं, लेकिन उम्र भर याद जरूर रहते हैं। आज के इस महफिल में वक्त की घड़ी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, उन दिनों की तरफ जब खुशियां छोटी छोटी बातों में मिल जाया करती थीं।

0: पीजिए सरकार।
1: कहना था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पे, जहां होती है दिल से दिल की बात, और मैं हूं आपका दोस्त साजिद इकबाल। दोस्तों, मोहब्बत जब अपने सबसे खूबसूरत ख्वाब बुनती है तो उनमें सिर्फ दो दिल नहीं होते हैं बल्कि एक पूरी दुनिया होती है। एक ऐसा आशियाना जहां खुशियों की रोशनी हो, वफा की महक हो और साथ निभाने के अनगिनत वादे। हर आशिक कभी ना कभी अपने महबूब के साथ ऐसे ही सुनहरे ख्वाब सजाता है, जहां आने वाला कल उम्मीदों से रोशन हो और हर सुबह एक नई मुस्कुराहट लेकर आए। आज का अगला नगमा भी कुछ ऐसे ही हसीन जज्बातों की तर्जुमानी है। एक ऐसा गीत जो बरसों गुजर जाने के बाद भी अपनी मिठास और मासूमियत से दिलों को छू लेता है। और अब इस नगमे को सुरों की दुनिया के शहंशाह मोहम्मद रफी के दिलकश आवाज का साथ मिला तो ये गीत हमेशा के लिए यादगार बन गया। मोहब्बत के इन खूबसूरत ख्वाब के साथ पेश खिदमत है जीवन मृत्यु का सदाबहार नगमा, झलमिल सितारों का आंगन होगा।

0: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 MHz पे। दोस्तों, मोहब्बत के दौर में एक जमाना ऐसा भी था जब दिल की बातें मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं, कागज के सफों पर उतरती थी। जब किसी का नाम लिखते हुए हाथ कांपते थे और खत के हर लफ्ज में दिल की धड़कने सुनाई देती थी। वो खत सिर्फ अल्फाज नहीं होते थे बल्कि जज्बातों का आईना होते थे। उनमें इंतजार भी होता था, इकरार भी, और मोहब्बत की वो मासूमियत भी जो आज भी यादों में महकती है। दोस्तों, आज का अगला नगमा हमें उसी खूबसूरत दौर में ले जाता है जहां एक आशिक अपने दिल की पूरी दास्तां एक प्रेम पत्र के जरिए बयां करता है, और जब इन जज्बातों को मोहम्मद रफी पुरकशिश आवाज मिली तो ये गीत मोहब्बत का एक अमर तराना बन गया। पेशे खिदमत है फिल्म संगम का सदाबहार नगमा।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब।

दोस्तों मोहब्बत की अपनी एक जबान होती है, कभी निगाहों से बात करती है, कभी खामोशी से, और कभी अल्फाज बनकर कागज पर उतरती है। एक दौर था जब दिल की धड़कनों को खतों में समेटा जाता था, किसी अपने को लिखे चंद लफ्ज महीनों तक संभाल कर रखे जाते थे। उन खतों में सिर्फ स्याही नहीं होती थी, बल्कि इंतजार, तड़प, चाहत और बेपनाह मोहब्बत की खुशबू बसी होती थी। और जब एक आशिक अपने महबूब को खत लिखता है तो उसे हर लफ्ज में फूल नजर आते हैं, हर जुमले में बहारों का एहसास होता है।

दोस्तों, ये थे आज के भूले बिसरे गीत जो हमेशा दिल को एक नई ताजगी देते हैं। ये पुराने नगमे कभी पुराने नहीं होते, ये हमेशा दिल के करीब रहते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के प्रसारण सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ हैं प्रसारण निष्पादक टी तांगजंग तथा तकनीकी अभियंता होली राम ब्रह्मा। दोस्तों, अब से थोड़ी देर में आप आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रमों को। तब तक के लिए आप अपने रेडियो दोस्त साजिद इकबाल को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब खैर।

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला।
1: ये उस दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी, लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
2: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
3: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
1: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार, लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
4: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
2: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
1: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन 3 मेजर हिंदी और 3 मेजर अंग्रेजी बुलेटिन को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
5: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रमाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता, चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रमाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूंगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या न करें, इसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है। और न्यूज में

0: खास तरह से इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देखकर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है। हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द, गलत तथ्य न जा सके, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
1: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनके सफर की कुछ अनसुनी यादें।
2: As far as the news is concerned, the people who were in the greats who were.
3: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मणिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपने स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे, एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
2: Fabulous gentleman was always dressed in his crisp white kurtas. So wonderful people and great memories of that time.
1: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की। सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
4: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुँचाया, चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां। लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
1: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
5: सबसे पहली चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज। लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूंगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
4: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
1: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
6: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपने साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
7: हर हंसी ख्वाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
6: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
8: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
9: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन, यहाँ पर 6 सदस्य टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
4: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
1: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़, जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे। तब आकाशवाणी ने वहाँ एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियाँ हर पीढ़ी तक पहुँचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
10: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरी से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए, वहां इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जयजी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन तीन स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी, मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी, हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला दे के उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पे तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास SMS या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहाँ मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
1: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों की रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
4: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ,
1: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के, सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
0: 60, 70 और 80 का दशक ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
2: और ये फ्री 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के तखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास याफ्ता रसूल को, याफ्ता रसूल ने, और गेंद भारत के डी में बाई तरफ जहां पे चौकर ने वहां पे पहुंच गया अब्बास भारतीय डी में, और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में तब बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में, और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।

0: मध्य विकेट कहिए या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए, इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान है उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण ही। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज जिस तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है। लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500-500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
1: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुंचाया ही नहीं बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिससे नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
2: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
3: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं मैंने भी उसको जिया है और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर जहां भारत ने 326 रन बनाए थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
2: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
1: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
4: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट कॉमेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तम पुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है।

0: जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूं, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
1: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
2: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती हैं।
3: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल, घर का सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
2: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट्स और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
1: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर, तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सहअध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक चार वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और खेलों में, न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में अफगानिस्तान ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। भारत के लिए मानव सुथार ने 3 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अभी भी भारत से 451 रन पीछे है। उधर मंगोलिया के उलानबटोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल ऐताकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields, including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains, and people-to-people exchanges. West Bengal Women and Child Development and Social Welfare Minister Agnimitra Paul today chaired a high-level administrative review meeting at Siliguri. This is Ms. Paul's first official visit to the North Bengal region after assuming office. Discussions focused on municipal affairs, women and child development, social welfare, disaster management, sanitation, drainage, waste management, traffic regulation, and the implementation of various government schemes. Later, addressing the media, Ms. Paul said Darjeeling, Mirik, Karsiong, Kalimpong and Siliguri will soon be developed as five Himalayan cities. She said Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal has expressed support for developing these towns, which is expected to boost tourism, trade, the tea industry and the regional economy, as well as generate employment opportunities. Lok Sabha Speaker Om Birla today asserted that the vision of Vikasit Bharat 2047 can only be realized through public participation, innovation, entrepreneurship and collective resolve. Addressing a conclave in New Delhi, Mr. Birla emphasized that entrepreneurship and nation building must progress hand in hand to ensure that the benefits of development reach every section of society. He noted that India's journey towards becoming a developed nation must be guided by inclusive growth, social responsibility and active citizen engagement. Highlighting the role of youth in shaping the future, Mr. Birla stated that educated, skilled and technology-enabled young people constitute the greatest strength of Vikasit Bharat 2047. Today is the last day to submit applications for verification of issues observed and re-evaluation of answers on the post-result services portal for the Class 12th examination. In a social media post, the Central Board of Secondary Education said that the portal will remain open until midnight. It asked the students to complete and submit their applications before the deadline. U.S. President Donald Trump said he will not unfreeze Iranian assets or lift sanctions before a peace agreement is reached with Tehran. In an interview with a private news channel, Mr. Trump said such measures would only be considered after a deal is finalized. Commenting on Iran's nuclear program, Mr. Trump said that if an agreement is reached with Iran, the United States would oversee the removal and destruction of Iran's nuclear-related equipment. However, he warned that if negotiations fail, Washington would seek to eliminate Iran's nuclear capabilities through what he described as very harsh military action. The southwest monsoon has further advanced into some more parts of west central and northeast of Bay of Bengal. According to the India Meteorological Department, southwest monsoon also advanced into some more parts of northwest Bay of Bengal, entire Nagaland, Manipur, Mizoram and some parts of Tripura, Assam and Arunachal Pradesh today. In cricket, Afghanistan were 113 for 5 in their first innings at stumps on day 2 of the one-off test against India in New Chandigarh, trailing by 451 runs. Rehmat Shah remained unbeaten on 43 at the end of play. For India, debutant Manav Sutar picked up 3 wickets, while fast bowler Prasidh Krishna claimed 2. Earlier in the day, India declared their first innings at a commanding 564 for 8. Captain Shubman Gill led the charge with 126, while KL Rahul struck 100. Rishabh Pant and Sai Sudarshan contributed 81 runs each, and Washington Sundar remained unbeaten on 52. And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ में मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के मद्देनजर ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शांति समझौता होने तक ईरान की संपत्तियां फ्रीज रहेंगी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने हान सियोंग सुक को देश का अगला प्रधानमंत्री नामित किया। और उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन, पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में ओपेक प्लस का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ शांति समझौता होने से पहले वे ईरान की संपत्तियों को फ्रीज ही रखेंगे और प्रतिबंध भी नहीं हटाएंगे। एक निजी समाचार चैनल के साथ भेंटवार्ता में उन्होंने ये जानकारी दी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौता हो जाता है तो ईरान के परमाणु संबंधी उपकरणों को हटाने और उन्हें नष्ट करने की निगरानी अमरीका ही करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर बातचीत विफल होती है तो अमेरिका ईरान की परमाणु क्षमताओं को नष्ट करने की कठोर सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अल्पकालिक समझौते में लेबनान को भी शामिल किए जाने पर वे बल नहीं देंगे। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया है कि एक रूसी ड्रोन ने चेर्नोबिल प्रतिबंधित क्षेत्र में इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन भंडारण केंद्र पर हमला किया है। यह हमला परमाणु ऊर्जा संयंत्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित ईंधन भंडारण सुविधा केंद्र की एक इमारत पर किया गया। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विकिरण का स्तर सामान्य बना हुआ है। उन्होंने बताया कि हमले में इमारत आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। हमले के समय इमारत में कोई परमाणु ईंधन नहीं था। हमले के बाद आग लग गई जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि रूस ने जानबूझकर महत्वपूर्ण परमाणु बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बढ़ती हुई लापरवाही को दर्शाती हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने वर्तमान लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री हान सियोंग सुक को देश के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ कांग हून सिक ने इसकी घोषणा करते हुए उनके प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यापक अनुभव की सराहना की। नेशनल असेंबली से मंजूरी मिलने के बाद सुश्री हान प्रशासन के अंतर्गत पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। इससे पहले हान मियोंग सुक वर्ष 2006 से 2007 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुकी हैं। ये नामांकन ऐसे समय में हुआ है जब खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री किम मिन सियोक अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। दक्षिण अमरीकी देश पेरू में आज राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। मुख्य मुकाबला रूढ़िवादी उम्मीदवार केइको फुजिमोरी और वामपंथी उम्मीदवार रॉबर्टो सांचेस के बीच है। केइको फुजिमोरी पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की पुत्री हैं। अप्रैल में हुए पहले चरण के मतदान में दोनों उम्मीदवारों ने 33 अन्य उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर दूसरे चरण में जगह बनाई थी। पेरू में 18 से 70 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए मतदान अनिवार्य है। देश में 2,70,00,000 से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें विदेशों में रहने वाले लगभग 12,00,000 पेरूवासी भी शामिल हैं। आर्मेनिया में संसदीय चुनावों के लिए मतदान जारी है, जिसमें सत्ताधारी सरकार पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए जनादेश प्राप्त करना चाहती है। प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी सत्तारूढ़ सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने इसी मुद्दे पर चुनाव प्रचार किया। उधर विपक्षी पार्टियां रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों का समर्थन करती हैं। वर्ष 2018 में सत्ता संभालने के बाद से श्री पाशिन्यान ने आर्मेनिया को यूरोपीय संघ के करीब लाए और अमेरिका की मध्यस्थता से हुए समझौते के माध्यम से पड़ोसी देश अजरबैजान के साथ शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज हुई गोलीबारी की कई घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, वहीं अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका में ओहियो के टोलेडो में एक लोकप्रिय सामुदायिक उत्सव के दौरान गोलीबारी में 12 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। स्थानीय मीडिया के अनुसार यह घटना ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के पास हुई। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के मद्देनजर ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा शांति समझौता होने तक ईरान की संपत्तियां फ्रीज रहेंगी। और उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन, पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।